मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए सुने खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता। वार्ता का विषय है खरीफ सब्जियों की प्रजातियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार।
1: बिहार में सब्जी की खेती लगभग 5.11 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है, जिससे लगभग 53.20 लाख टन सब्जी उपजती है। वैसे बिहार के जनसंख्या के लिए लगभग 73 लाख टन सब्जी की आवश्यकता है, इसलिए सब्जियों की उन्नत किस्में लगाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। नेनुआ, पूसा चिकनी, यह प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली गई। इस प्रजाति की खेती खरीफ एवं जायद में की जाती है। इसके फल चिकने तथा हरे रंग के होते हैं, जो बुआई के 75 से 80 दिन में तैयार हो जाते हैं। फलों का औसत भार 150 से 200 ग्राम होता है। एक पौधे से लगभग 15 से 20 फल प्राप्त होते हैं। राजेंद्र ननुआ एक, यह किस्म सिवान जिले के स्थानीय किस्म से चयन विधि द्वारा निकाली गई है। इस किस्म की व्यवसायिक अनुशंसा सन 1992 ईस्वी में की गई। यह अत्यंत अगात किस्म है, जो गर्मा तथा खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की औसत उपज क्षमता 270 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म के फलों का स्वाद उत्तम होने के कारण ग्राहक अधिक पसंद करते हैं। यह सफेद चूर्ण तथा फल विगलन रोधी किस्म है। झिगनी, पूसा नजदार, यह प्रजाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। इसके फलों पर उभरी हुई धारियां बनी रहती हैं। सतपुतिया, इसके फल छोटे छोटे होते हैं और गुच्छों में लगते हैं। एक गुच्छा में करीब 4 से 7 फल लगते हैं। यहाँ पर इसकी खेती अधिक होती है। बैंगन, पूसा पर्पल लौंग, यह बहुत प्रचलित और उत्तम प्रजाति है। इस प्रजाति के फल गहरे बैंगनी रंग के तथा 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बुआई के लगभग 80 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र अन्नपूर्णा, इस प्रजाति का विकास तमिलनाडु के

0: स्थानीय किस्म अन्न मलाई से चयन विधि द्वारा किया गया है। ऊपरी भूमि में खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त है। इस किस्म में फल देर से लगते हैं। फलों का रंग बैंगनी होता है। औसत उपज लगभग 275 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म लिटिल लीफ, उगता, फोमोप्सिस रोग रोधी है। राजेंद्र बैंगन 2। यह प्रजाति समस्तीपुर क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति से चयन विधि द्वारा निकाली गई है। यह हरे लंबे फल वाली एक अगात प्रजाति है। फलों की पहली तोड़ाई बीज बोने के 68 दिनों के बाद होती है। फल हरे रंग के, चमकीले, मुलायम तथा कम बीज वाले होते हैं। यह प्रजाति उकता रोग रोधी है। इस प्रजाति पर फल छेदक कीट का आक्रमण नहीं के बराबर होता है। इसकी उपज लगभग 280 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। पूसा पर्पल राउंड यह बहुत प्रचलित उन्नत प्रजाति है। इसका पौधा बड़ा, फल गोल तथा गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। फल लगभग 500 ग्राम वजन का होता है। यह प्रजाति जुलाई अगस्त में लगाने के लिए अच्छी है। इसकी औसत उपज 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। भिंडी पूसा सावनी उत्पादन की दृष्टि से यह एक उत्तम प्रजाति है। खरीफ में 60 से 65 दिन में फलने लगती है। इसके फल हरे रंग के, 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे तथा खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इस प्रजाति पर मोज़ेक बीमारी का अपेक्षाकृत कम प्रभाव होता है।
1: खेत कल्याण कार्यक्रम में आपने जाना खरीफ सब्जियों की प्रजातियों के बारे में वार्ताकार डॉक्टर विनोद कुमार से। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। आइए अब सुनें दिल्ली केंद्र से संस्कृत हिंदी समाचार।

कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।

0: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन। वाचन स्वर है नाओमी शांति हेम्ब्रम का, आलेख सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का।
3: भारत एक विशाल देश है। यहाँ के समाज में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और अनेक समुदाय के लोग निवास करते हैं। सामाजिक संरचना का यदि अवलोकन किया जाए तो कृषि की विफलता, घरेलू उद्योगों की कमी तथा रोजगार का अभाव होने के कारण लोग गांव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। देखने और सुनने में ये समस्या सामान्य सी लगती है कि रोजगार के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पलायन किसी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होता है। पलायन करने वालों के इस वर्ग में एक बड़ी आबादी हाल के दिनों में बाल श्रमिकों की रही है। इन बाल श्रमिकों की उम्र अमूमन 14 वर्ष से कम की होती है। ऐसे बच्चों को इस उम्र में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जबकि इन्हें कारखानों, ईंट भट्ठों, होटलों, रेस्तरां आदि में काम करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही बाल श्रमिकों का एक वर्ग घरेलू कामकाज में भी लगा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक नैतिकता उस समय शून्य हो जाती है जब एक घर में माता पिता अपने कम उम्र के बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं, ठीक उसके विपरीत अपने यहाँ काम करने वाले बाल श्रमिक के साथ करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे की तरह ही वो बच्चा भी शिक्षा का अधिकारी है। सिर्फ अपने बच्चों का ही भला चाहने वाले ऐसे समाज का उत्थान होगा या पतन, इसे बताने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्तर पर ऐसे बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हमारी मानसिकता उन्हें स्वीकार करने की जरूरत ना हो जाए। हमें सामाजिक परिस्थितियों को समझना होगा, अपने आप को विचारशील प्रयत्नशील बनाना होगा। सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चल सकता। बाल श्रम समाज को कैंसर की तरह जकड़े हुए है, जिसका अगर जल्द से जल्द समाधान न हो पाया तो हमारे अपने बच्चे भी कल को परिस्थितिवश इसमें शामिल हो जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज इस पर चिंतन कीजिए।
2: चिंतन मनन। आप सुन रहे थे वाचन स्वर था नाओमी शांति हेम्ब्रम का। आलेख था सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

0: हमारे प्यारे भारतवर्ष में माँ गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। माना जाता है कि वो हर दुख को हर लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी गंगा जल में औषधीय गुण हुआ करते थे, शीतलता हुआ करती थी, परंतु हमारी नासमझी ने, हमारी अनदेखी ने गंगा जल के औषधीय गुणों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और उसकी शीतलता को समापन की ओर लेते आए हम, हमारी अनदेखी, हमारी नासमझी। परंतु ये कहना आज भी पूर्णतः गलत नहीं होगा कि भारतवर्ष के लोग आज भी गंगा को माँ की तरह पूजते हैं, परंतु विडंबना ये है कि केवल माँ की तरह पूजते ही हैं। अगर माँ की तरह उनका ख्याल भी रखना शुरू करते तो शायद हम फिर से गंगा को, माँ गंगा को ये कह सकेंगे कि वो मोक्षदायिनी है। आज भी उनके जल में शीतलता मौजूद है। ज़रूरी है कि हम अपने इस विश्वास को कर्म में लेकर आएं, गंगा की साफ सफाई का ध्यान रखें, गंगा को कचरे से ना भर दें, क्योंकि गंगा हमारी माँ है और भारतवर्ष हमेशा ये मानेगा कि गंगा पूजनीय है, माँ है और उनका ध्यान हमें ही रखना चाहिए।
1: लगा हुआ है अक्सर हम देखते हैं।

चरणा अमृत गंगा जल। हिमालय के चोटियों से गुजरने की वजह से कई सारे औषधीय गुण उसमें मिल जाते थे, जिसकी वजह से वो वाकई अमृत हो जाता था। और साथ ही गंगा के तट पर जाने पर मन को असीम शांति भी प्राप्त होती थी। जो भी माँ गंगा के तट पर जाया करता था और अभी भी जो गंगा किनारे थोड़ी देर बैठ जाता है, अपने सारे दुख, अपने सारे कष्ट भूल जाता है। गंगा के पास शांति एक अजीब सी होती है, माता गंगा के पास ठंडी ठंडी हवा और साथ में माँ गंगा का आशीर्वाद। कहते हैं कि ऊंचे पर्वत अमरकंठ से आई है माँ, और ऋषि मुनियों ने भी माँ की महिमा गाई है। हमारे पूर्वजों ने गंगा माँ को बहुत ही सहेज कर रखा था। हमारे पूर्वजों ने माता गंगा को माँ गंगा जैसा ही सहेजा था, माँ जैसा सहेजा था।

कहते हैं कि पुराणों में ये वर्णित है कि एक बार माता गंगा भी भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और उन्होंने शिव जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। तब शिव जी ने उत्तर दिया था, उन्हें बताया था कि उनका हृदय केवल और केवल आदि शक्ति यानी कि माता पार्वती के लिए समर्पित है, इसलिए वो किसी और से विवाह नहीं कर सकते। बाद में शिव जी ने गंगा माता को गंगा माता की भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी जटाओं में सर्वोच्च स्थान यानी कि मस्तक पर स्थान प्रदान किया और उन्हें हमेशा अपने साथ रखने का वरदान दिया। माँ गंगा आज भी कहते हैं कि शिव की जटाओं में उन्हें स्थान प्राप्त है। शिव जिन्हें कि भोले नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर किसी की बात सुनते हैं और थोड़ी भी भक्ति करें और सच्चे मन से करें, श्रद्धा से करें, पवित्रता के साथ करें तो वो हमारी बात अवश्य सुनते हैं क्योंकि वो भोले होते हैं। वो वरदान देने में ज़्यादा देर नहीं लगाते, परंतु शर्त इतनी होती है कि हमारे मन में पवित्रता हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानिए दांतों की रिफिलिंग के बारे में डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आलम से।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं दांतों की फिलिंग विषय पर, और तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शहजाद आलम। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांत जो हमारे नेचुरल दांत होते हैं वो तो काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें कुछ बीमारियां हो जाती है जिसके कारण वो खोखले हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में ज़रूरत पड़ती है दांतों की फिलिंग करने की। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिससे कि हमारे दांत खराब हो सकते हैं या खोखले हो सकते हैं।
2: देखिए, दांतों की फिलिंग, जैसे आपने कहा कि क्या ज़रूरत पड़ती है दांतों की फिलिंग की, ठीक है, हम लोग डेली जिस तरह से खाना पीना खाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फूड लॉजिंग होती है। फूड लॉजिंग होने से क्या होता है कि उससे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो आप देखिएगा दांत के ऊपर ब्लैक स्पॉट जैसा आने लगता है।
1: अच्छा,
2: ठीक है, तो इनिशियली वहीं पे पिक करना चाहिए पेशेंट को कि हाँ भाई वहाँ पे दांत में दाग आ रहा है, लेकिन पेशेंट उस समय उतना ये नहीं हो पाते हैं,
1: दांत को जानकारी दांत के ऊपरी सतह पर ब्लैक स्पॉट नजर आने लगे,
2: ब्लैक स्पॉट
1: समझना चाहिए
2: कि आपको कैरीज होना शुरू हो गया, मतलब खुरड़ का शुरुआत हो चुका है
1: जी।
2: धीरे धीरे वो चीज़ अंदर से सड़ता जाता है और कभी कुछ हार्ड चीज़ चबा लेने से दांत टूट जाता है और पेशेंट का कंप्लेन होता है कि हम खाना खा रहे थे दांत टूट गया।
1: जी जी,
2: ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है,
1: पहले से वो कमजोर होता है।
2: कमजोर होता जाता है
1: जी। तो इन लक्षणों के बाद जब व्यक्ति चिकित्सक के पास जाते हैं तो फिर कोई ऐसी जाँच होती है जिससे कि निश्चित किया जाए कि आपको रिफिलिंग की ज़रूरत है।
2: देखिए, अगर कैविटी आपको दिख रहा है, ठीक है, और उस पर पेन नहीं है, पेशेंट को अगर कभी पेन नहीं हुआ है
1: जी,
2: ठीक है, तो उसको कैविटी को साफ करके, या फिर आप बेटर ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसको एक एक्सरे करके देख लें कि क्या उसके पल्प को टच तो नहीं किया है। अगर पल्प को टच नहीं किया है और कभी पेन का हिस्ट्री भी नहीं रहा है पेशेंट को, ठीक है,
1: दर्द नहीं महसूस,
2: कभी दर्द नहीं हुआ है, तो उसको साफ करके उसको फिलिंग कर दिया जाता है। जो सड़ा पार्ट है उसको मशीन से काट कर निकाल दिया जाता है और उसको फिर से रिफिलिंग कर दिया जाता है
1: जी। तो इस प्रक्रिया में जो पदार्थ उपयोग में आते हैं दांत में भरने के लिए
2: जी,
1: तो क्या वो खाद्य पदार्थ से रिएक्ट कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली सीमेंट या फिर सिल्वर आज के दौर में सबसे अच्छा कॉस्मेटिक हमारा रहता है, लाइट क्योर बोलते हैं, कंपोजिट रेस्टोरेशन
1: जी,
2: ठीक है।
1: इसमें क्या
2: कंपोजिट रेस्टोरेशन मतलब एक तरह का कॉस्मेटिक फिलिंग है, ठीक है
1: जी।
2: उसमें तित को जितना सा सड़ा पार्ट है पार्टिकुलर उतना काट कर उसको फिलिंग कर दिया जाता है। जैसे चांदी, चांदी के लिए एक आपको बॉक्स जैसा बनाना होता है, क्योंकि चांदी तीत के साथ रिएक्ट नहीं करता है
1: जी,
2: ठीक है, चांदी रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए तीत को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काटना पड़ता है ताकि उसके लिए एक बॉक्स बना सके और उसको अच्छी तरह से फिल किया जा सके। लेकिन कॉस्मेटिक फिलिंग में ऐसा नहीं है, जो कैविटी है, जो कैरियस पार्ट है, उसको रिमूव कर दिए फिर उसको जाके फिलिंग कर दिया जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये फिलिंग की जाती है
2: जी,
1: उसके बाद क्या वो उसी तरह से कार्य करता है जैसे पुराने दांत करते थे
2: जी, जी,
1: या उसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं?
2: नॉर्मल फंक्शन करता है, कोई दिक्कत नहीं उस पे। जिस तरह से पहले लोग पेशेंट खाते थे अपने दांत से, वैसे खा पी सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं।
1: कोई विशेष रखरखाव उन दांतों
2: की? बस थोड़ा केयर करना होता है कि फूड आप खा पी रहे हैं, ठीक है, फूड लॉजिंग नहीं हो रहा है। ठंडा गर्म से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है
1: जी,
2: वो जब खोलड़ होता है तो उस समय अगर आपके पल्प के क्लोज में आ रहा है या बोली तो दांत के सेकंड लेयर यानी कि डेंटिन के पास आ जाता है कैविटी, तो आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, ठीक है।
1: अच्छा,
2: तो वो इनिशियल साइन है कि आपको पेन आगे हो सकता है, ठीक है, सेकंड लेयर में आने के बाद, तो बेहतर होता है उस समय उसको साफ करके भर दिया जाए
1: जी, पहले ही उसका उपचार,
2: पहले उसको उपचार कर दीजिएगा, दांत आपका बच जाएगा
1: जी। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कौन कौन से परहेज करने चाहिए जिससे कि दांतों में कैविटीज या सड़न ना हो।
2: मेनली चिपचिपा पदार्थ वगैरह या चॉकलेट वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि दांत पे चिपक के रह जाता है, जब वो रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें सड़न होती है, सड़न होगी वो और मतलब ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वही ऑर्गेनिक एसिड ही डिमिनरलाइज करता है। तित आपका जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना, वो जो कि मिनरल्स है, ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है उसको डिमिनरलाइज कर देता है।
1: अच्छा,
2: जब वो डिमिनरलाइज करेगा तो फिर धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट आना शुरू होता है, यानी कि उसका मिनरल्स का जो चेन बना वो टूट टूट जाता है, ठीक है, और उसमें सड़न होना शुरू होता है, वही आगे प्रोग्रेस करके आपका दांत बुरी तरह सड़ा देता है
1: जी, यानी कि साफ सफाई करने से हमारे दांतों
2: दो
1: में कैविटीज नहीं हो सकती।
2: जी, दो टाइम रेगुलर ब्रश करना होता है
1: जी।
2: वो कीजिए, जब भी खाना पीना खाइए अच्छे से 2-3 बार कुल्ला कर लीजिए, कहीं फूड पार्टिकल्स नहीं बचेगा, तो फिर आपके दांत में सड़न भी नहीं होगी।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भेंटवार्ता का विषय था दांतों की रिफिलिंग। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आलम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान राजन मिश्र, साजन मिश्र और अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का था लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

रामचरितमानस गान आप सुन रहे थे राजन मिश्र, साजन मिश्र और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा संक्षिप्त रूप से।

रोजाना की तरह प्रातः 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान पाते हैं मौसम का हाल, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां, साथ ही आनंद लेते हैं सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का। और आज कथा सागर में होगा कहानी बेटी का घर, कहानीकार होंगी सपना चंद्रा। श्रोताओं, आज फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए। प्रातः 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे, 2:30 पर, शाम 5:30 पर, रात 8 बजे और रात 9:30 पर। सुनिए सुगम संगीत में कलाकार पायल चक्रवर्ती को प्रातः 9:30 पर। दोपहर 3 बजे कलाकार होंगे जगजीत सिंह और रात 7:52 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे सुनील कुमार मिश्र। सुनना न भूले नाटक वापसी प्रातः 10:30 पर। नाटक के लेखक होंगे अमरेंद्र, श्री अमरेंद्र, और प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री निहार रंजन नाग। आज प्रातः 11:30 पर आकाशवाणी @90 के तहत विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा में भेंट वार्ताकार जयप्रकाश मिश्र, भेंट करता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। बहनों का विशेष कार्यक्रम नारी लोक दोपहर 12 बजे, 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोकगीतों का प्रसारण समय आज है दोपहर 1 बजे, कलाकार होंगे कृष्णानंद पासवान। शाम 7:10 पर कलाकार पवन कुमार राम को सुनिए। धारावाहिक गंगा के सुरताल की दूसरी कड़ी दोपहर 1:30 पर, लेखक होंगे रमेश रमन।

3:20 पर प्रस्तुत होता है समूह स्वर में देश भक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक आप सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 10 बजे आज अनुप्रसारित होगा प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 10 बजे। हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आपने सुना कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से सुनिए संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया जोड़ने की, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस विशेष कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, बहुत सी जानकारियाँ होने वाली है और बहुत सा मनोरंजन भी होने वाला है। और जानकारियों की बात करें तो अगर हम जानकारी की पोटली खोलें तो सबसे पहले बहुत ही छोटी पर बेहद ज़रूरी जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, मैं आपको बताने वाली हूँ वक्त का हाल बता दूँ तो 7:02 हो चुके हैं और दिन है आज गुरुवार का, तारीख है 4 जून 2026। तो ये था वक्त का हाल। और कहते हैं कि जो वक्त के साथ नहीं चलता है, जो वक्त की कदर नहीं करता, एक वक्त पे वक्त भी उसकी कदर करना भूल जाता है। इसलिए वक्त को अच्छी तरीके से पकड़ कर रखिए। और साथ ही कई बार हम वक्त के साथ भागने के चक्कर में ना गलत रास्ते पर भाग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम वक्त से ज़्यादा तेज भाग जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वक्त से ज़्यादा तेज और वक्त से पहले कोई कहीं नहीं पहुंच सकता है। इसलिए चाहे जो भी परिस्थिति हो, सही रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो सही के रास्ते पर चलते हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं, सत्य के प्रति उनके मन में अगर सच्चा प्रेम होता है तो वो हर बाधा को पार कर देते हैं। और कई बार तो अगर उन्हें सच के लिए थोड़ा बलिदान भी देना पड़ता है तो बाद में जाकर उन्हें एहसास होता है कि वो जो बलिदान हमने दिया था ना, वो शायद हमारे फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए था।

इस वक्त हम सत्य के मार्ग पर चल रहे होते हैं, कोई परेशानी आती है और हमें लगता है कि अगर हम गलत रास्ता चुन लेंगे तो वो आसान होगा, परंतु लंबे समय में वक्त हमें बताता है कि जो सही था वही सही था। गलत हमेशा गलत होता है और अंत भी उसका गलत होता है। खैर बहुत सी बातें, लेकिन अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मनोरंजन, जी हाँ, अपने कार्यक्रम की शुरुआत मनोरंजन के साथ करते हैं। और हमारे कार्यक्रम में आज सुगम संगीत के कलाकार हैं भोले शंकर झा। आइए इनकी आवाज़ में सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की लिखी ये कविता, और जिसे आप गीत भी कह सकते हैं। और इस गीत के जरिए से आप और भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि जो सत्य के साथ रहता है, उसका जीवन थोड़ा कठिन हो, कई बार उसे बलिदान भी करना पड़े, पर अंततः वो पाता है कि वही जीता है, क्योंकि सत्य के राह पर चलने वाला अक्सर अंत में जीत ही जाता है।

0: एक सत्य तो ये भी है कि अभी मौसम बड़ा भयावह हो रहा है, और दूसरा सत्य ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा और हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं उनका भी काफ़ी योगदान है। और खैर, अभी आज के मौसम की हम बात करें तो आज अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और अगर हम बात करें आसमान की, तो आसमान पूरी तरीके से साफ तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अच्छी धूप खिलेगी, यानी कि गर्मी काफ़ी तेज़ होगी। साथ ही कुछ समय पर, कुछ वक्त पर आप देखेंगे कि बादल भी होंगे आसमान में, लेकिन बारिश होने की संभावना काफ़ी कम है। तो ये है आज के मौसम का हाल, मौसम का मिजाज ऐसा रहने वाला है। आप अपने दिन की पूरी प्लानिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने साथ जहाँ भी जाएं। ख़ास तौर से तो आप कोशिश करें कि दोपहर के वक्त अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना ही निकले, ऑफिस में ऑफिस में रहें, अगर घर पे हैं घर पे रहें, लेकिन घर से बाहर सीधी धूप में निकलने से बिल्कुल बचे। और अगर फिर भी ज़रूरत हो तो पानी की बोतल और छतरी लेकर निकले, आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और इससे आपके परिवार वाले भी थोड़े राहत में रहेंगे। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के उस पार हम यहीं होंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: बिल्कुल अपने वादे के अनुसार एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में हम आगे बढ़ेंगे और एक और प्यारे से गीत का आनंद लेंगे, बिल्कुल भोले शंकर झा की आवाज़ में। और इस गीत को लिखा है गोपाल सिंह नेपाली ने। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। गीत के उस पार और भी बहुत सी बातें और बहुत सी जानकारियां आपका इंतज़ार कर रही है। आप कहीं दूर मत जाइएगा, बस हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ जुड़े रहें।

0: वाकई जब कोई अपना अजीज बहुत दूर चला जाता है या थोड़ा भी दूर जाता है तो हमारा मन बार बार पुकारता है और सोचता है कि काश हमारी पुकार सुनकर कोई आ जाए। और आप कहीं आज दूर जाने वाले हैं या आपका अपना कोई कहीं सफ़र पर जाने वाला है या कोई आने वाला है आपसे मिलने के लिए, तो फिर आपको वक्त का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा। और ख़ास तौर से कोई बिल्कुल अपना आपसे मिलने आने वाला होगा तो आप सोच रहे होंगे कब कितनी जल्दी ये समय बीत जाए तो अच्छा, लेकिन कहते हैं कि समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं हो सकता है। खैर, अगर हम समय की बात करें तो ट्रेन का अगर हम हाल आपको बता दें, ट्रेनों के समय का हाल बता दें, तो ट्रेन संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने बिल्कुल निर्धारित समय पर यानी कि 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस सुबह 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चलते हुए यानी कि 8:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने तय समय से 1:05 की देरी से चलते हुए 9:10 पर भागलपुर आएगी। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर राइट टाइम है, अपने ये निर्धारित समय यानी कि 8:37 पर भागलपुर आएगी। 13409 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस 9:00 भागलपुर पहुंचेगी। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी अपने सही समय से चलते हुए 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी अपने बिल्कुल सही समय पर यानी कि 10:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। बात करें आनंद भागलपुर आनंद बिहार विक्रमशिला एक्सप्रेस यानी कि 12367 की, तो बिल्कुल अपने सही समय निर्धारित समय 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। उम्मीद है कि आप इन समय का ध्यान रखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से या फिर हम अपनी आदत की वजह से थोड़े लेट हो जाते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल भागा दौड़ी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे यात्री होते हैं जो बिल्कुल अंत समय में ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं और कई बार तो ट्रेन से लटक कर वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। इन अगर आप भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो थोड़ा संभल कर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जान की फिक्र होनी चाहिए और अगर ट्रेन छूट भी गई तो हो सकता है कि आप अगली ट्रेन पकड़ेंगे या तो फिर आपने जो देरी की है उसकी वजह से आपकी ट्रेन छूट जाए, तो छूटने दीजिए लेकिन अगली बार समय पर जाइए। और इस तरीके से भाग दौड़ कर लटक कर ट्रेन पकड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी दिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में बिल्कुल सोचिए और सोचिए कि अगर कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, और होना भी नहीं चाहिए, अगर आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति की तो जो उसका नुकसान होता है, साथ में उसके परिवार की पूरी कहानी, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। किसी की एक गलती से किन्हीं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और समय से निकले, घर से निकले समय से, और वक्त का हाल आप बिल्कुल ध्यान में रखें और ट्रेन पर जब भी आप चढ़ें तो भागा दौड़ी के साथ ना चढ़ें। फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको ज़िंदगी के नए और कुछ अलग पहलू से रूबरू कराते हैं कहानी के साथ। जी हाँ, आज हम कहानी कथा सागर में कहानी सुनने वाले हैं बेटी का घर। कहानीकार हैं सपना चंद्रा। आइए इस कहानी को सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस कहानी का और मिलते हैं इस कहानी के बाद। आप सुनिए ये कहानी, बेटी का घर।
1: लंबे इंतजार के बाद भूषण जी के आंगन में किलकारी गूंजी थी। पत्नी यशोधरा के तप और विश्वास का ही नतीजा था। कहाँ कहाँ नहीं माथा टेका, हर दिन ईश्वर के सामने अपने आंचल फैलाकर बांझपन से मुक्त कर लेने की याचना करती। प्रार्थना ने जीवन में रंग भरे। एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म लेते ही जैसे घर, आंगन, पेड़ पौधे सभी झूमने लगे थे। बड़े हर्ष के साथ उन्होंने अपनी माँ को यह सुखद खबर सुनाया। माँ, मैं और यशोधरा माता पिता बन गए। और आप दादी? लक्ष्मी आई है हमारे घर। ये खबर सुनते ही जैसे उनका चेहरा उतर ही आया था। ठीक है ठीक है, पुत्र होता तो अच्छा होता, हमारा वंश भी आगे चलता। अब जो ईश्वर की इच्छा, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं ना। माँ आप भी कैसी बात करती हैं, पुत्र हो या पुत्री हमारे ही संतान है, इस खुशी के मौके पर ऐसी बात मत कीजिए। यशोधरा तो फूली नहीं समा रही, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, एकदम राजकुमारी जैसे। मैंने उसका नाम भी तय कर लिया है, सुमन। अच्छा है ना माँ? हाँ हाँ अच्छा है, नाम कोई भी रखो या कुछ भी करो, है तो पराई अमानत। एक दिन उसे इस घर से विदा करना होगा, ये याद रखना। ओ माँ आप भी ना वही पुरानी दक्यानुसी बातें लेकर बैठ गई, बेटा हो या बेटी हमारे लिए एक ही है, हमारा ही अंश है, फिर ये भेद कैसा। इन सब बातों का तो कोई अर्थ नहीं, मेरी बच्ची मेरे लिए अनमोल है। अनमोल तो है, पता तो तब चलेगा जब ये बड़ी हो जाएगी। बेटी को ब्याहना पड़ता है भूषण, वो भी दान दहेज के साथ। भूषण जी अपने मन में एक बात ठान लिए, मुझे अपनी बच्ची को एक काबिल सिपाही बनाना है और यही मेरा लक्ष्य होगा। दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे, मानो पंख लगाकर उड़ रहे थे। बच्ची की तोतली बोली हो या नन्ही नन्ही कदम मन मोह लेती थी। बच्चे जन्म लेते ही माँ बोलना सीख जाते हैं, पर पिता को इंतजार करना पड़ता है। एक दिन गोद में बिटिया को लेकर उसके साथ खेलते हुए उन्होंने कहा, मुझे बाबूजी कहकर कब पुकारेगी बिटिया, सिर्फ माँ ही कहती है। बच्चे खिलखिलाकर प्रतिक्रिया देती। उसे शब्द का ज्ञान ना था, पर स्पर्श का था। नजर पड़ते ही उस ओर दौड़ पड़ती और अंगुली थामे बाबूजी की गोद चढ़ जाती। यशोधरा को अब उसकी शिक्षा की चिंता सता रही थी, कब तक उसे यूं ही लाड़ प्यार करेंगे, कहीं वह जिद्दी ना हो जाए। बातों ही बातों में भूषण जी से कहा, देखिए अब अपनी सुमन बड़ी हो रही है, उसे किसी अच्छी स्कूल में दाखिला करवा दें, बच्चों के साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी। सही कह रही हो यशोधरा, शिक्षा ही तो असली ताकत है, मुझे मेरा प्रण भी पूरा करना है। इस दुनिया में उसे सर उठाकर जीना है, मेरी आन बान बनेगी मेरी यह बिटिया। हाँ मैं टेलीविजन पर चलने वाली एक सीरियल अफसर बिटिया बहुत मन से देखा करती थी। मेरे मन में भी खूब पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत इच्छा थी, मगर मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपनी बिटिया को ही अफसर के रूप में देखकर खुश हो लूँगी। चलो हमारा और तुम्हारा सपना ईश्वर जरूर पूरा करेंगे, हम दोनों ही इसके लिए हर प्रयास करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, ग्रामीण परिवेश के बीच रहकर भी अपनी बिटिया को एक सशक्त इंसान बनाना चाहते हैं। बिटिया ने भी खूब लगन से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, अब गांव से बाहर आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। माता पिता होने के नाते उन्हें चिंता तो थी, पर अपनी परवरिश पर भरोसा भी था। बड़ा शहर, नामी कॉलेज और आधुनिक फैशन, यह सब देखकर थोड़ा असहज होने लगे थे। सुमन पिता की परेशानियां भांप रही थी। उसने विश्वास दिलाया, आपकी बिटिया यहाँ पढ़ने आई है, कुछ कर दिखाने आई है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। थोड़ी उदासी और भरे मन से बिटिया को कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ा, खूब मन से पढ़ाई करना, यह कहकर वापस गांव लौट लिए। घर का खालीपन काटने को दौड़ता, बिटिया की हर चीज उन्हें याद दिलाती, हर बार मन को समझाते हुए, आएगी ना जब वह एक काबिल इंसान बनकर मेरे सामने आएगी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पिटिया दौड़ कर मुझसे लिपट जाएगी। उसके अच्छे भविष्य के लिए यह दुख तो सहना ही होगा। देखते देखते कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाना चाहती थी। कुछ दिनों की छुट्टियों में वह घर आ गई। माँ के हाथों की मनपसंद व्यंजन और पिता के साथ चुहलबाजियाँ किसी छोटे बच्चे की तरह सतानियाँ करते देख दादी गुस्सा भी होती। एक दिन मौका देखकर उन्होंने भूषण जी को कह दिया, अरे अब तो तेरी लाडली पढ़ लिख गई, हाथ पीले करने की सोच, अच्छा घर भर पाने के लिए एड़िया घिस जाती है, आखिर में छोरी को अपने घर ही जाना है। जाने क्यों दिल पर भारी बोझ सा महसूस हुआ। पिता पुत्री की नजरें एक दूसरे से टकराई, मगर दुखी होने के बजाय एक फैसले का वक्त था। माँ अपना घर, ये मेरी अकलौती संतान है, ये इतना बड़ा घर इसका ही तो है, इसे कभी एक घर की असुरक्षा महसूस नहीं होगी। रही बात बर की, तो कोई समझदार इसे मिल जाए तो यह मुझे बता सकती है। विवाह एक खाना पूर्ति भर नहीं है, और ना ही बिटिया को मैं पराया धन कहता हूँ। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूँगा। एक तेरी ही तो बिटिया नहीं है इस संसार में, बेटियों का भाग ही है कि पिता का घर छोड़ पति के घर जाना पड़ता है। हम सभी इस व्यवस्था से बंधे हैं, इसलिए रीति रिवाजों के साथ चलना पड़ता है। नहीं माँ, बदलाव के लिए कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, मुझसे ही सही। नियम कायदे सहूलियत के लिए होने चाहिए, ना कि घुटन पैदा करने के लिए। अगर मेरी बिटिया को अच्छी शिक्षा, एक अच्छा घर बार प्राप्त करके भी जीवन के किसी मोड़ पर खुद को असहाय समझना पड़े तो किस काम का। अंदर बरामदे में बैठी यशोधरा अपने पति की बातें सुनकर ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी। जरूर मेरे और मेरी बच्ची जी किसी अच्छे कर्मों का ही फल है, जो मैंने इन्हें पति के रूप में पाया और उसने पिता के रूप में। फिर वह दिन भी आया जिसका बेसब्री से इंतजार था। एक प्रतिष्ठित कंपनी में सुमन की नौकरी लग गई। घर पहुंचते ही उसने दादी के पैर छुए। दादी ने

0: कुछ और था और अब कुछ और है। तभी मोबाइल की घंटी बजी, उनके किसी दोस्त का था। बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी ब्याह की बात हो रही है। फोन रखते ही भूषण जी अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए आए। एक अच्छी खबर है माँ, देखिए इधर बिटिया के कदम घर में पड़े और उधर घर बैठे एक रिश्ता आ गया। लड़के और उसके परिवार वाले के बारे में जैसा बताया मुझे तो बहुत जच गया। लड़का एक उच्च अधिकारी है, अगले हफ्ते वो लोग हमारे यहाँ आएंगे। सचमुच अब मेरे मन के धुंधले बादल छट चुके हैं, आसमान एकदम नीला दिख रहा है।
1: कथा सागर में आप सुन रहे थे कहानी बेटी का घर। कहानीकार थी सपना चंद्रा। वाकई और वाकई इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। वो जो मानसिकता कभी रही थी हमारे समाज की और शायद आज भी कुछ घरों में ये मानसिकता है कि अगर बेटी का जन्म हुआ है तो उन्हें उतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन आज के वक्त पे बेटियां हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही है और हर क्षेत्र में वो अपना परचम लहरा रही है। ऐसे में अब इस मानसिकता को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, और क्योंकि अब कहता है कि हर किसी को बराबरी का अधिकार है। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के जन्म के साथ खुशियां मनाते हैं, और कई गांवों में तो आपने ये सुना होगा कि पौधारोपण किया जाता है। तो आइए एक गीत सुनते हैं और गीत के उस पार मिलते हैं, और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जानकारियां बाकी है। ये है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से।

एक बहुत ही प्यारे से गीत के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और अगर मैं वक्त का हाल आपको बता दूँ तो अभी वक्त हो रहा है 7:34 और दिन है आज गुरुवार का, तारीख है 4 जून 2026। और 4 जून को क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है आइए जानते हैं, यानी कि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज के तारीख में दर्ज हुआ है। साल 2006 में यूगोस्लाविया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। साल 2007 में चीन के उप प्रधानमंत्री हांग चू का निधन हो गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। साल 2008 में हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी मिलने चाहिए इस बात की घोषणा की थी। और आज ही के दिन न्यूयॉर्क में सन 2008 में सीनेटर हिलेरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार उन्होंने इस पद के लिए उम्मीदवारी हासिल की थी। और कुछ इतिहास की बातों को हम जाने तो 1783 में फ्रांस में मोंटे गोल्फियर बंधुओं ने पहली बार गर्म हवा के गुब्बारे का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। और 1917 में पहला प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डनकर्क निकासी अभियान यानी कि ऑपरेशन डायनेमो सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग के तियान आन मेन चौक में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1989 में ही पोलैंड में साम्यवादी शासन के बाद पहली आंशिक रूप से स्वतंत्र संसदीय चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। और साल 2001 में नेपाल के राजा वीरेंद्र और शाही परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र औपचारिक रूप से नेपाल के नए राजा बने थे। और अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था। साल 2018 में साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का निधन हो गया था। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट माने जाते थे। साल 2016 में सुलभा देशपांडे का निधन हुआ। सुलभा देशपांडे हिंदी और मराठी फिल्मों को उन्होंने अपना समय दिया था और हिंदी और मराठी फिल्मों की भारतीय अभिनेत्री थी। अचंत लक्ष्मीपति, इनका निधन 1962 में हो गया था। अचंत लक्ष्मीपति आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध थे। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे होंगे। 1988 में जन्म हुआ था प्रवीण भगत का। प्रवीण भगत भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1946 में जन्म हुआ था एसपी बाला सुब्रमण्यम का। एसपी बाला सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक है। 1936 में जन्म हुआ था नूतन का। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है नूतन। और बात करें तो आज ही के दिन 1986 में जन्म हुआ था राफेल नडाल का। और राफेल नडाल स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। और अगर हम नूतन की बात करें तो नूतन की बहुत सारे फिल्मों को आपने देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो आपने उनके बारे में सुना ज़रूर होगा। और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और बहुत सी इनकी कुछ फिल्में जैसे कि मिलन है, इन कुछ फिल्मों से इन्होंने अपना एक अलग नाम बना लिया था। 4 जून 1936 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो एक्टिंग होती थी ना, बहुत ही सहज, और अपनी सादगी के लिए ये काफ़ी मशहूर थी। लेकिन इनकी जो भावपूर्ण आँखें थी,

लोग आकर्षित हो जाते थे। इन्होंने लगभग 4 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया था और उन्हें 6 बार, जी हाँ 6 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का उन्होंने एक रिकॉर्ड भी हासिल किया था। 6 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर हम बात करें तो इनका जन्म एक बहुत ही संपन्न मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक निर्देशक थे, एक कवि थे, और वहीं उनकी माँ शोभना एक जानी मानी अभिनेत्री थी। प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा उनकी छोटी बहन है, शायद ये बहुत ही कम लोगों को पता है। और अगर हम बात करें तो बहुत ही कम उम्र से, 14 साल की उम्र में 1950 में इन्होंने फिल्म अपना शुरू कर दिया था, फिल्मी करियर अपना शुरू कर दिया था। हमारी बेटी से बतौर मुख्य अभिनेत्री इन्होंने डेब्यू किया था और ये फिल्म उनकी माँ शोभना ने ही निर्देशित किया था। हालांकि नूतन को सफलता 1955 में आई फिल्म सीमा से मिला और इस फिल्म ने यानी कि सीमा फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया और इसी फिल्म के लिए यानी कि सीमा फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करें तो नूतन ने कुछ फिल्मों में काम किया था, सुजाता, बंदिनी, मिलन और सौदागर। और अगर हम बात करें तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए 21 फरवरी 1991 में 54 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। लेकिन आज भी उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हैं, आज भी उनकी जो फिल्में हैं उन्हें आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। आइए उन्हीं के फिल्म का एक गीत सुनते हैं और गीत के उस पार एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के उस पार वापस हम होंगे और बहुत सी बातें करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आप भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक छोटे से अंतराल और एक बहुत ही प्यारे से गीत के इस बार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। हमने इतिहास के पन्नों को पलट लिया, अब जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। जी हाँ, आज के समाचार पत्रों को पलटते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास खबरें हैं। दिल्ली के होटल में आग बचने का मौका नहीं मिला, 22 लोगों की मौत, इनमें 11 विदेशी भी शामिल। बिहार कैबिनेट का फैसला, कैंसर, हार्ट जैसी बीमारियों के लिए सरकार देगी पैसा। मिडिल क्लास को कवच, अब 4 लाख की आय पर भी मुफ्त इलाज संभव। केंद्र की बिहार को सौगात, खगड़िया पूर्णिया हाईवे अब 4 लेन बनेगा, 2 घंटे में पूरी होगी दूरी, 3,936 करोड़ मंजूर किए। विधायक अनंत सिंह और अमरेंद्र पांडे के खिलाफ CID जांच शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, MSME पर जोर दे, 50,000 एकड़ का लैंड बैक, 11 मेगा पार्क और जिले में फूड पार्क खुलेंगे। 11 राज्यों की नीति का निचोड़, 1 जुलाई से बदल जाएगी स्कूलों की सूरत, 10 दिन में आएगी नई ट्रांसफर पॉलिसी, जून में 5,80,000 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। मुफ्त नाव यात्रा का मर्म, बिहार में CM ने कहा, नाव यात्रा मुफ्त, लेकिन नाविक बोले, डीजल का पैसा तो देना ही होगा। अच्छी पहल, सिंगल लाइन वाले PSS को बैकअप व्यवस्था से आपूर्ति होगी, सभी PSS को डबल 33 KV सोर्स, फॉल्ट पर नहीं कटेगी बिजली, अलीगंज PSS के कंट्रोल रूम में होगा विस्तार। मायागंज के सुरक्षा गार्डों और सुरक्षा एजेंसी के बीच गुरुवार को वार्ता होगी, वार्ता में आज वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों पर चर्चा होगी। 12 रात और 13 दिन की यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग शामिल। 5 प्रमुख तीर्थ दर्शन के लिए 14 जुलाई को दुमका से खुलेगी विशेष ट्रेन। 1 यूनिवर्सिटी 2 नियम, शिक्षकों को 65, कर्मियों को 62 में रिटायरमेंट, कर्मचारी और गेस्ट फैकल्टी समान व्यवस्था लागू करवाने के पक्ष में। 1 जुलाई से नए डिग्री कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई, 18 जून तक फर्नीचर व कंप्यूटर उपलब्ध कराएं, DM का आदेश। एक अच्छी खबर किताब प्रेमियों के लिए, जिले के किताब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर के ततारपुर स्थित मुस्लिम हाई स्कूल के मैदान में 4 से 7 जून तक भागलपुर पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। ये मेला हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मातृभाषा को बढ़ावा, 2,481 स्कूलों तक पहुंचेगा ओलंपियाड का संदेश, 25 से अधिक देशों में होगा आयोजन, ऑनलाइन मिलेगी अध्ययन सामग्री, हिंदी के वैश्विक विस्तार की पहल। श्रावणी मेला शुरू होने में 56 दिन शेष, अजगैवीनाथ मंदिर परिसर की बोरिंग अभी से फेल, मेला क्षेत्र में लगे 292 हैंडपंप में 70 से अधिक खराब, 30 के कल पुर्जे भी गायब। मुआवजा लेने के लिए 430 में से सिर्फ 9 किसान ही पहुंचे, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि का मुआवजा देने का लगा था शिविर। पीरपैंती बाबूपुर रोड पर पुल निर्माण की गति धीमी, बाढ़ में लोगों को परेशानी होगी, 3 साल पहले बाढ़ में पुल ध्वस्त हो गया था, 2 महीने पहले काम शुरू हुआ है। कैबिनेट के फैसले, सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 को मिली मंजूरी, मोबाइल पर सुलभ होगी सरकार, हर जिले में बैठेंगे ई गवर्नेंस पदाधिकारी। मेडिकल कॉलेजों में ऑटो सिरिंज अनिवार्य दोबारा प्रयोग पर रोक, एक बार इस्तेमाल के बाद लॉक हो जाएगी सिरिंज। भारतीय कंपनियां कामकाज का पूरा ढांचा एआई के इर्द गिर्द नए सिरे से तैयार करने में जुटी, तैयारी तेज, देश के टॉप 3 आईटी कंपनियों के 3,00,000 कर्मचारी अब एआई को पायलट पर होंगे। टॉप आईटी कंपनियों के दफ्तरों में 95% तक पहुंचा एआई टूल का इस्तेमाल, सबसे बड़ा इंटरप्राइज एआई रोल आउट भारतीय बाजार में। अल्फाबेट में एआई इंफ्रा के लिए 7,06,000 करोड़ जुटा रही। झांग इमिंग की संपत्ति 7 साल में 7 गुना बढ़कर 8,90,000 करोड़ हुई। टिकटॉक के सह संस्थापक इमिंग एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने, अंबानी से भी आगे निकले। सालाना 10.5% बढ़ने की राह पर देश का जीवन बीमा बाजार। इंश्योरेंस की बात करें तो 10 साल में जापान से आगे नंबर 2 पर होंगे हम। 2025 में भारत में कुल इंश्योरेंस प्रीमियम जापान के मुकाबले आधा रहा है। क्रूड 3% चढ़ा, सेंसेक्स 304 अंक टूटा। अब बात खेल की। नॉर्वे चेस में 12 अंक के साथ टाइटल की रेस में प्रागी की नंबर 1 कार्लसन पर 7 दिन में दूसरी जीत। आज बीसीसीआई की बैठक, बड़ा बदलाव संभव, टी20 कप्तानी से हट सकते हैं सूर्या, श्रेयस और तिलक रेस में। फ्रेंच ओपन में एक और उलटफेर में 6-3, 5-7 और 0-6 से हारी वर्ल्ड नंबर 1 सवालेंका, आसान ट्रॉफी से चूकी सवालेंका। क्वार्टर फाइनल में बाहर हुई 4 बार की मेजर चैंपियन। 20 साल के जैकब मेंसिक ने तोड़ा इवान लेंडल का रिकॉर्ड। क्रिकेट की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड के खेल संबंधों का 100 साल का जश्न। दौरे पर अक्टूबर से दिसंबर तक 2 टेस्ट, 5 वनडे और 5 T20 खेलेगा भारत। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा दौरा करेगी टीम इंडिया, 12 मैच खेलेगी। फुटबॉल में लुकाकू की वापसी यादगार, बेल्जियम ने क्रोशिया को 2-0 से हराया। बैडमिंटन में आयुष सेट्टी प्री क्वार्टर में सात्विक चिराग चोट के कारण बाहर। महिला क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम ने 180 रन भी नहीं बनाया, घर पर सबसे बड़ी चेज कर T20 सीरीज जीता इंग्लैंड। अंडर 18 एशिया कप में 10 खिलाड़ियों ने अपना स्थान बनाया। हॉकी में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया, नौशीन के 7 गोल। खाड़ी में फिर तनाव, ईरान सेना बोली ताजा हमला अमेरिका के लिए सबक, संकट में सीज फायर, ट्रंप बोले जंग खत्म होने के करीब, ईरान बोला बातचीत बंद। कर्नाटक में शिव कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, शपथ लेते ही शिव कुमार का पहला फैसला, छात्रों के लिए फ्री बस पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तमिलनाडु कर्नाटक के ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग बैन सही, हर मोबाइल वर्चुअल जुआ घर, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन रहा। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब हमसे वक्त कह रहा है कि अब मुझे इजाज़त लेनी चाहिए और आज के गुड मॉर्निंग विक्रमशिला को यहीं विराम देना चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी साबित होगा और साथ ही आपको अच्छा भी लगा होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ ख़ास बात की अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ध्यान, और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। तो चलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही हर रोज़ कुछ नया सीखते रहें और अपने जीवन का आनंद लेते रहें। नमस्कार।

0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण

0: को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
2: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय

0: राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology, communication and information, and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as foreign minister in 2015 and as vice president in 2019, 2023, 2024, and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investments in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected

0: ready today. Union Home Minister Mitchell to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasana Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को एक गोल से हराकर भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू जेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने की खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि वेनेजुएला के लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवियत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते के फरोग से मुतालिक वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई तय की सीएम टास्क फोर्सेज की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़िराअत, बागबानी, सरमायाकारी के फरोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फरोग, इक्तिसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और हथकरघा और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशन पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादले ख्याल से मुश्तरक मकासद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतल्लिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदाम करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पा बांता पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंकामूरा के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की सरहदी चौकी पर वो जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तिजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करेगी, कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करेगी। इसके तहत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली के द्वारा जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आम लोगों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।
1: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
1: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने बक्सर के नबीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पेय पदार्थ उत्पादन इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति भी दी है। एक अन्य फैसले में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित दादर मौजा की 7 एकड़ अर्जित जमीन पर डेयरी और दुग्ध उत्पादन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
2: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रस्तावित नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इस महीने शुरू होगा। इसके लिए समानुपतिकरण का कार्य 10 जून तक पूरा हो जाएगा।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है विभाग, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए महिलाओं का ट्रांसफर, पुरुषों का ट्रांसफर, और इसको लेकर के हमारी नीति अगले 10 दिन में हम पूरा करेंगे और जून महीने में ट्रांसफर से जुड़े हर प्रकार के समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमारे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफर को लेकर समस्या रहती थी, वो अपने जिस विद्यालय को उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस विद्यालय में वो नजर आए।
0: एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नया कोचिंग कानून लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग कानून के लिए बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक 2026 लाया जाएगा।
3: एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और होटलों के निर्माण के लिए 31 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। पटना में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की बैठक में उद्योग मंत्री ने कहा कि 16 औद्योगिक इकाइयों के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में 992,63,00,000 रुपए के निवेश का अनुमान है। श्री सिंह ने कहा कि औद्योगिक इकाई के लिए पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भूमि आवंटित की गई है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में आगलगी की घटना में 21 लोगों की मौत के बाद बिहार पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा के सभी होटल और गेस्ट हाउसों की जांच के निर्देश दिए हैं। 3 चरणों में इन जिलों के होटल और गेस्ट हाउस की जांच 15 जुलाई तक पूरी करने का आदेश दिया गया है। पहले चरण में 15 जून तक इन जिलों के सभी थाना अध्यक्ष

0: को अपने अपने क्षेत्र के होटलों की सूची बनाकर पुलिस उपाधीक्षक को सौंपनी होगी। वहीं दूसरा चरण 15 जून से 30 जून के बीच चलेगा, जबकि तीसरा चरण 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। अनुसंधान अपराध विभाग सीआईडी ने गोपालगंज में जदयू विधायक आनंद सिंह और अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ दर्ज अलग अलग कांडों की जांच शुरू कर दी है। दोनों विधायकों पर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो पदाधिकारियों के नेतृत्व में अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के मीरगंज थाने में एक कार्यक्रम के दौरान मोकामा के विधायक आनंद सिंह की मौजूदगी में समर्थकों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं कुचायकोट थाने में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला दर्ज है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आ रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने कहा कि इस मामले में लापरवाही के दोषी सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। तो कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया जी सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
3: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकिनगर का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर विभाग ने सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों में आज आंधी बारिश की आशंका भी जताई है। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर 7 जून से यातायात सेवा शुरू हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुल पर वाहन परिचालन का ट्रायल सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रोच रैंप का निर्माण कार्य भी अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। श्री पाल ने कहा कि परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4-पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती और सुरक्षा का आकलन किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के अनुसार परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और पुल पर यातायात संचालन के लिए आवश्यक मानकों की पुष्टि हो गई है। इसके बाद 7 जून से वाहनों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बेली ब्रिज के चालू होने से भागलपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदा हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमंखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। मालदा रेल मंडल के एडीआरएम एके मौर्या ने जमालपुर का दौरा कर विभिन्न रेल परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एडीआरएम ने डीजल शेड के पास निर्माणाधीन नई पिट लाइन, एग्जामिनेशन लाइन, सर्विस बिल्डिंग समेत अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा पेंशन योजना की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में डीडीसी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने एचआईवी एड्स से बचाव के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। जिले में 17 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर एड्स, सिफिलिस और अन्य बीमारियों की जांच निःशुल्क की जाएगी। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह, बगहा के पुलिस अधीक्षक, एसएसबी कमांडेंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जमीन विवाद को लेकर स्थल निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में किसी विवाद और संवेदनशील गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। छपरा स्थित सदर अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि कुमारी ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। राजस्थान में कल से आयोजित होने वाली 36वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित ऑल इंडिया महिला टेनिस टूर्नामेंट में पटना की भार्गवी शर्मा ने उत्तर प्रदेश की इराम जैदी को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भार्गवी का सामना तमिलनाडु की सिलेश्वरी से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, राज्य मंत्रिमंडल का फैसला, मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से अब 4 लाख रूपये तक आय वालों को भी सहायता। दैनिक जागरण लिखता है, स्कूली बस में अनिवार्य रूप से लगाना होगा सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन। प्रभात खबर ने सरकारी टेंडर में हेराफेरी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ऋषुश्री के ठेके में क्यों बनाए पेटी कॉन्ट्रैक्टर। अखबार लिखता है, होगी जांच। दैनिक भास्कर ने आरबीआई के हवाले से लिखा है, सोना बेचने की खबर भ्रामक, 1 साल में भंडार बढ़ा। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार में क्यूआर कोड यूपीआई से जमा होगा चालान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मेरी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आप आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद ले फिल्म संगीत कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना SP बाला सुब्रमण्यम के स्वर में फिल्म है साजन। संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने, बोल हैं समीर के।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है।

0: Akashvani at 90.
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है क्या हुआ
2: फीस की टेंशन
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
4: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
3: वो कहाँ है
4: मिठाई
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट फिल्म संगीत कार्यक्रम नगमे नए पुराने में आपका पुनः स्वागत है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आइए सुने पीके फिल्म का ये गाना। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाजों में अल्फाज हैं अमिताभ वर्मा के, संगीतकार शांतनु मोइत्रा।

अगले गीत के लिए आवाज दी है नीति मोहन ने। फिल्म पद्मावत के इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत है संजय लीला भंसाली का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत पायल चक्रवर्ती के स्वर में। आरंभ में सुनिए ब्रह्मानंद की ये रचना।

AIR at 90. आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

AIR at 90. आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। आइए सुने कबीर दास का लिखा ये भजन।

सुगम संगीत में कलाकार थी पायल चक्रवर्ती। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 10 बज चुके हैं श्रोताओं, ये समय होता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम का पहला गाना गायिका गीता दत्त की आवाज में फिल्म प्यासा से। संगीतकार साहिर लुधियानवी, गीतकार सचिन देव वर्मन।

अगला गाना हमने लिया है पोस्ट बॉक्स 999 फिल्म से, स्वर है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, अल्फाज पीएल संतोषी के।

अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। पत्थर के सनम फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गाना गायक मोहम्मद अजीज की आवाज में, गीतकार इंदिवर का लिखा, संगीतकार राजेश रोशन, फिल्म है आखिर क्यों।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आइए अब सुने लता मंगेशकर की आवाज में प्रतिज्ञा फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं आइए अब सुने हसन कमाल का लिखा ये गीत सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म है निकाह। संगीत तैयार किया है रवि ने।

0: नाटक सत्तावान का शहर। इस नाटक को लिखा है डॉक्टर अमरेंद्र ने, प्रस्तुतकर्ता अरुण कुमार, प्रस्तुतकर्ता हैं अरुण कुमार पासवान। श्रोताओं, ये नाटक आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
3: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
2: रूबरू होंगे आप खबरों से।
3: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
2: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
3: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
2: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
3: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
2: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
3: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
3: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
2: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
4: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
5: तिलका मांझी तो बहुत।
4: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
5: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अब प्रस्तुत है नाटक सत्तावान का शेर। लेखक डॉक्टर अमरेंद्र, प्रस्तुतकर्ता अरुण कुमार पासवान।

0: आज भाई साहब के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी दिख रही है।
1: कारण है अमर सिंह, इसका कारण है अंग्रेजी शासकों को पटना के सक्रिय स्वराज्यों के बारे में पता लग गया है।
0: सुना है इन स्वराज्यों में देसी पुलिस भी शामिल है।
1: हाँ, जिला तिरहुत के पुलिस जमादार वारिस अली को स्वराज्यों के साथी होने के जुर्म में ही फांसी दे दी गई है। अली करीम तो भाग निकला, लेकिन पटना के क्रांतिकारी संगठन के प्रभावशाली तीनों मौलवियों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: लोगों में इस बात के लिए आक्रोश नहीं है?
1: हाँ, क्रांति भड़क गई है और क्रांति के मुख्य नेता पीर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। पीर अली के फांसी को लेकर दानापुर के देशी पलटनों ने स्वाधीनता का ऐलान कर दिया है।
0: ये तो अच्छी खबर है।
1: हाँ, और ये भी खबर आई है कि वे विद्रोही सैनिक मुझसे मिलने जगदीशपुर की ओर चल पड़े हैं।
2: लो, वे लोग आ ही गए। चलो, मैं स्वयं उनका अभिनंदन करूंगा।

0: राजा साहब, हमें आपका नेतृत्व चाहिए कि हम इन फिरंगियों से अपनी मातृभूमि को मुक्ति दिला सकें।
1: बहादुर क्रांतिकारियों, मैं अपने हाथ में तलवार लिए तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, और अब एक पल के लिए भी यहाँ इंतजार करना व्यर्थ है। मेरी सेना भी तैयार है। सेना की मजबूती के लिए सबसे पहले हमें आरा के अंग्रेजी खजानों पर अधिकार करना होगा। चलो।

0: हमने अंग्रेजी खजानों पर अधिकार कर लिया है, अंग्रेजी दफ्तरों को ध्वस्त कर दिया है, जेलों से कैदियों को मुक्त कर दिया है।
1: बस अब किले पर अधिकार करना है जिसमें देसी सैनिकों के साथ अंग्रेज पुलिस छुप के बैठे हैं।
2: लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे आत्मसमर्पण करेंगे।
0: करेंगे, अवश्य करेंगे। तुम लोग देख रहे हो मेरे इस 80 साल के वज्र शरीर को, मैं इसमें समंदर लहराता हुआ महसूस करता हूँ, और समंदर जब अंगड़ाई लेता है ना, तब 100-100 सल्तनतें इसमें डूब जाती हैं।
2: मैं लज्जित हूँ राजा साहब।
0: सुनो, लगता है किले में बंदी सैनिकों की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना आ रही है। चलो हम लोग सामने वाले आम के बगीचे में वृक्षों पर छुप जाएं। सेना उसी बगीचे से गुजरेगी, और जब वह गुजरेगी तब हम उन पर गोलियों की बारिश कर देंगे। रात हो रही है, वे हमें देख भी नहीं सकेंगे।
1: सेना का संचालक दानापुर का कप्तान डनवर भी मारा गया। कहिए तो उन भागते 25-50 सैनिकों को भी।
0: नहीं, सैनिकों को नहीं, प्राणों की रक्षा के लिए जो सैनिक युद्ध भूमि छोड़ दें, उनकी हत्या के लिए उद्यत होना हिंदू राजाओं की रणनीति के विरुद्ध है। भागने दें।

0: मैं राजा कुंवर सिंह किले के बंदी सैनिकों से कह रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने आत्मसमर्पण किया तो तुम लोगों की जान बख्श दी जाएगी।
1: क्या खबर है अमर सिंह?
2: भाई साहब, डनवर सहित लगभग सारे सैनिकों को मार दिए जाने की खबर दानापुर पहुंच गई है और मेजर आयर एक बड़ी सेना लिए तोपों के साथ इस किले की सेना की सहायता के लिए चल पड़ा है।
0: तो हम भी उन्हें बीबी गंज से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तोप वालों को इसका पता होना चाहिए कि हिंदुस्तानी सैनिकों के कलेजे किस चट्टान से बने होते हैं। सैनिकों, चलो।

0: ये राया कोनो सिंह का फौज के सामने हमारा फौज ठेक नहीं पा रहा है।
1: कैप्टन हेस्टिंग्स।
0: यस सर।
1: दुश्मनों पर तोपों की बारिश करो।
0: ओके सर।
2: अमर सिंह, जीता हुआ युद्ध हाथ से बाहर जाता लगता है। नई सैन्य शक्ति के लिए हमें जगदीशपुर की ओर लौटना चाहिए। सैनिकों, राजधानी लौटो।

0: क्या खबर है अमर सिंह?
1: भाई साहब, हमारा पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिकों ने महल को चारों ओर से घेर लिया है।
0: मैं चाहता भी यही था और यही होगा, जानता भी था। मैं अंग्रेज सैनिकों की तरह प्राणों की रक्षा के लिए महल या किले में छिपा नहीं रह सकता।
1: लेकिन मेरी राय माने तो आप महल की सभी स्त्रियों को लेकर 1200 सैनिकों के साथ राजधानी से बाहर निकल जाएं। इसे प्राणों का मोह न कहा जाए। मातृभूमि और मान की रक्षा के लिए ये समय की मांग है।
0: लेकिन ये युद्ध?
1: आश्वस्त रहें भाई साहब, मैं अपने सैनिकों की इस छोटी टुकड़ी के बल पर ही एक पखवाड़े तक निरंतर अंग्रेजी सेनाओं के साथ युद्ध करता रहूंगा।
0: तो ठीक है, मैं अन्यत्र पहुंचकर अंग्रेजों पर आक्रमण की तैयारी करूंगा, पर जाने के पूर्व युद्ध के उत्सव का प्रारंभ देख कर ही जाऊंगा। सैनिकों को आदेश दिया जाए कि वे अपनी बंदूक की गोलियों और दुश्मन की छातियों को एक कर दें।

0: मिलमैन।
1: यस सर।
0: मुझे खबर मिली है कि अपनी सेना सहित राजा कुमार सिंह ने आजमगढ़ से 25 मील दूर अथरौली स्थान में डेरा डाला है। उन्होंने आजमगढ़ के अन्य क्रांतिकारियों को भी अपने फेवर में कर लिया है।
1: सर, मिलमैन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ पैडल, कुछ सवार और दो टोपे लेकर 22 मार्च को कुमार सिंह की सेना पर ठावा बोल दूंगा।

0: सैनिकों, मुझे खबर मिली है कि अंग्रेज सेनापति मिलमैन हम पर आज आक्रमण करेंगे। हम उनके सर्वनाश का दृश्य इसी अतरौली के मैदान में देखेंगे। अंग्रेजी सेना नजदीक आ गई है, सामने होते ही उन पर आक्रमण कर देना है और फिर पीछे लौटते हुए जंगलों में छिप जाना है। जब मिलमैन को विश्वास हो जाए कि दुश्मन भाग खड़े हुए हैं और वे मौज मस्ती मनाने लगे, हमें उन पर टूट पड़ना है।
1: रोको इन बंदूकों और टोपों को, दुश्मन भाग चुके। आओ इज्जत के खुशी में नाचो गाओ।
0: केतु देखो, दुश्मन गोलियों से छलनी होकर कैसे एक दूसरे पर गिर रहे हैं, जैसे जंगल की सफाई हो रही है। और उस सेनापति मिलमैन को तो देखो, अपने सैनिकों और तोपों को छोड़कर कैसे भागे जा रहे हैं, जैसे गीदड़ ने सिंह देख लिया हो।
2: मैं लाज खाने की परेशानी का कारण जान सकता हूं?
3: लॉर्ड मार्कर हट हो गए। हमारी परेशानी को जानना चाहते हो? सब कुछ जानते हुए मिलमैन की पराजय के बाद उसकी सहायता के लिए कर्नल डैम्स के नेतृत्व में जिस अंग्रेजी सेना को भेजा गया था वह भी पराजित हुई।

0: और कर्नल डेम्स ने आजमगढ़ के किले में घुसकर आपकी जान बचाई। लॉर्ड मार्कर
1: आदेश।
0: बाबू कुबर सिंह अभी बनारस के ठीक उत्तर में है।
1: सुना है उन्होंने लखनऊ से भागे हुए सभी क्रांतिकारियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया है।
0: बिल्कुल ठीक सुना है। तुम सेनापति के रूप में सेना और टोपों से राजा कुबर सिंह पर वैसा ही हमला करो जैसा बाबू कुबर सिंह करते हैं। जाओ।

0: केतु, आज 6 अप्रैल 1858 है। आज मैं 81 वर्ष का कुंवर सिंह हो गया हूँ और आज के ही दिन मेरा मुकाबला सेनापति लॉर्ड मार्कर से होगा। आज मार्कर को मेरे यौवन का वह उन्माद देखना होगा जिस उन्माद के समक्ष सागर का उठता वह भीषण ज्वार भी ठहर जाता है। धरती के सीने को भयभीत करने वाला भूकंप भी भयभीत हो उठता है। आज मेरे पुरुषार्थ के जोर से यह भूमंडल डोलेगा।
1: क्या बात है शानिक, तुम घबराए क्या हो?
2: दरअसल बात यह है कि उस बूढ़े राजा ने हमारे सैनिकों का सफाया उसी तरह कर दिया जैसे बब्बर शेर जंगल के जानवर जीव जंतुओं का कर देता है।
1: यो शट अप सेनापति, लॉर्ड मार्कर कहाँ है?
2: अपने प्राणों की रक्षा उन्होंने आजमगढ़ के किले में भाग कर की है, पर दुर्भाग्य से राजा कुंवर सिंह के सैनिकों ने उन्हें उसी किले में बंदी बना लिया है।
1: माय गॉड, हश बोले राजा ने सेनापति मार्कर को बंदी बना लिया है? व्हाट अ शेम। हम आज एक दूसरी सेना मार्कर की सहायता के लिए सेनापति लेगर्ट के नेतृत्व में भेजा है। हिंदुस्तान का एक बूढ़ा आदमी भी हिंदुस्तान भर की ताकत लेकर खड़ा रह सकता है? How terrible!

0: केतु, आज मैंने भयानक स्वप्न देखा है। देखा कि अंग्रेजी सेना राजधानी जगदीशपुर को बूंटों से कुचल रही है और मेरी प्रजा मुझे अपनी राजधानी लौटना पड़ेगा केतु, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए।
1: जैसे कि खबर मिली है, सेनापति लेगर्ड हम पर चढ़ाई के लिए चल चुके हैं।
0: मैंने उसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। मेरी सेना का एक दल सेनापति लेगर्ड के आजमगढ़ पहुंचने से पूर्व ही उसे तानू नदी के पुल पर रोककर मुकाबला करेगा। बाकी सेना लेकर मैं गाजीपुर की ओर चला जाऊंगा। केतु, लेगर्ड से मुकाबला के लिए मैं जिस दल को भेज रहा हूं, वह महीने भर लेगर्ड की सेना से युद्ध कर सकता है और हमारे दल को जैसे ही उसका आभास हो जाएगा कि हम लोग काफी दूर निकल आए हैं, वह लड़ाई छोड़कर हमसे जा मिलेगा। बेचारा लेगर्ड।

0: सर बाबू कुआं सिंह ने हम लोगों को उल्लू बनाया है। वह तो मुख्य सेना के साथ अपनी राजधानी जाने के लिए गाजीपुर की ओर चले गए हैं।
1: व्हाट? राजा ने हमें उल्लू बनाया, हम भी उसे मौजा बना के सोएंगे। सैनिकों गाजीपुर की ओर बढ़ो।

0: लो, लेगर्ड अपनी सेना लेकर यहाँ भी आ पहुंचा। अब इन सब की बलि चढ़ाकर ही गंगा की ओर बढ़ूंगा।
1: सैनिको वो यहाँ राया कुआ सिंह और उसकी सेना
2: फायर।

घंटे भर की मार में ही रुई की तरह धुन गए। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागते हैं।

0: केतु, हम फिर गिर गए हैं। सेनापति डगलस ने नगई गांव को पूरी तरह से घेर लिया है। हम इस विपत्ति का बड़ी नीति के साथ मुकाबला करना होगा।
1: आखिर वह नीति क्या होगी?
0: हमारी सेना 3 टुकड़ियों में बट जाएगी। एक टुकड़ी डगलस से युद्ध करती पीछे की ओर हटेगी, और जैसे ही युद्ध करते अंग्रेजी सेना थकेगी, हमारी अन्य 2 सैनिक टुकड़ियां भी 2 ओर से उन पर टूट पड़ेगी।
1: तब तो डगलस की सेना की कब्रें भी यहीं पर बनेंगी।
0: केतु, हम लोग घाघरा नदी पार कर गंगा के करीब आ पहुंचे हैं। इस बीच सेनापति डगलस ने 2 बार हम पर आक्रमण किया और दोनों बार पीठ दिखा गया। क्या पता गंगा पार करते करते फिर एक बार युद्ध करने कोई अंग्रेज कप्तान आ पहुंचे।
1: आपकी शंका अस्वाभाविक नहीं है।
0: ऐसे हाल में शहर में हमें यह अफवाह फैला देनी चाहिए कि कुंवर सिंह की सेना बलिया के निकट हाथियों पर सवार होकर गंगा पार करेगी। जाहिर है यह खबर सुनते ही अंग्रेजी सेना बलिया की गंगा पर तैनात होगी और रात्रि के समय हम लोग शिवपुर घाट से किश्तियों में सवार हो गंगा पार कर जाएंगे।

My God, को सिंह हम को धोखा दिया। हम यहाँ उसका इंतजार करता और वो पलटन हालिया हमको ठुरन से फिर पाचने होगा। प्रोसीड।

लगता है अंग्रेजी सेना को सच्चाई का पता लग गया और वो यहाँ तक आ पहुंची। लेकिन अब तो हमारी किश्ती मध्य गंगा में है। लगता है किसी अंग्रेज सैनिक ने गोली चला दी जो मेरे दाएं हाथ में आ लगी है। कम वक्त गोली भी लगी तो दाएं हाथ में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाएं हाथ बाकी है। मैं इसी हाथ से अपने दाएं हाथ को काट कर गंगा को समर्पित करूंगा। माँ, मैंने इसी हाथ से तुम्हारे सैकड़ों शत्रुओं के सर उतारे थे, वही हाथ तुम्हें समर्पित करता हूं। किश्ती तेज करो।

0: लीग्रैंड।
1: यस सर।
0: 8 महीने जगदीशपुर से बाहर रहने के बाद राजा कुमार सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के सैनिक सहयोग से पुणे राजधानी पर कब्जा कर लिया है। हाउ डिसग्रेसफुल।
1: आपके आदेश का इंतजार है सर।
0: ओके, तुम आज ही एक बड़ी सेना लेकर जगदीशपुर पर हमला करो। राजा कुमार सिंह के साथ ये हमारी आखिरी लड़ाई हो। लास्ट फाइट।
1: यस सर।

0: आपने सुना नाटक सत्तावान का शेर। लेखक थे डॉक्टर अमरेंद्र, प्रस्तुतकर्ता अरुण कुमार पासवान। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

अरमान खान और विशाल मिश्रा को आपने सुना फिल्म हक में। गीतकार कौशल किशोर, संगीतकार थे विशाल मिश्रा। और में कहां दम था। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मैथिली ठाकुर के स्वर में। मनोज मुंतशिर का गीत, संगीतकार हैं MM क्रीम।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से कार्यक्रम। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत है नई फिल्मों से कार्यक्रम में। और संदेशों के पहले आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और शादा फरीदी और अल्तमश फरीदी को फिल्म गदर 2 में। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों को। फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह को, फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं प्रीतम।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आकाशवाणी एट 90 के तहत विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के सेवानिवृत्त

0: आकाशवाणी अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, इन 90 वर्षों की आकाशवाणी ने अपनी यात्रा किस प्रकार पूर्ण की, इसके तहत कई कार्यक्रम विभिन्न केंद्रों से चलाए जा रहे हैं। आकाशवाणी भागलपुर भी इसके तहत कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है और इसी श्रृंखला में हम पेश करते हैं कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा, जिसमें हम अपने केंद्र से जुड़े कार्यक्रम विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्घोषकों, तकनीकी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रोताओं से उनकी यादों और अनुभवों को साझा करते हैं। मुझे याद है जरा जरा के कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त वरीय उद्घोषक जयप्रकाश मिश्र जी। स्टूडियो में और कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार और धन्यवाद आपका। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस गरिमामय आयोजन में आपने भेंटवार्ता के लिए मुझे आमंत्रित किया, जिससे मुझे प्रसन्नता हुई और मुझे कुछ कहने का भी अवसर मिला। इसके लिए आपको, आकाशवाणी परिवार के सभी अधिकारियों एवं सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद और आभार। साथ ही कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को भी नमस्कार और इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को।
0: जयप्रकाश मिश्र जी, आपने लंबे समय तक आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे में आकाशवाणी से जुड़ी आपकी स्मृतियां एवं अनुभव आपके मन में बसे हुए होंगे, इस संबंध में आप कुछ प्रकाश डालें।
1: जी निश्चित रूप से, जब हम आज आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष मना रहे हैं तो इतिहास के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और ये सफर जून 1923 में ब्रिटिश राज के दौरान रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे एक छोटे से बीज के रूप में शुरू हुई। इसके बाद 1930 में यह सरकारी नियंत्रण में आया और जून यानी कि 8 जून 1936 को इसे ऑल इंडिया रेडियो की आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। इसके पश्चात हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए 1956 ईस्वी में इसका नाम आकाशवाणी किया गया
0: जी,
1: जिसका ध्येय है बहुजन हिताय है,
0: बहुजन
1: सुखाय
0: जी।
1: और इसी स्वर्णिम इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया।
0: क्या मोड़ आया वो?
1: जब 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा की देश में शुरुआत हुई
0: जी।
1: यह केवल विज्ञापन प्रसारण सेवा या गानों का चैनल मात्र नहीं था
0: जी, ये तो दिलों की धड़कन थी
1: जी। और आज भी हम लोग कहते हैं विविध भारती दिलों की धड़कन है। अगर हम उस समय की बात करें तो ये भारत के हर घर का साथी भी बन गया
0: जी, बिल्कुल।
1: हवा महल, जयमाला, सखी सहेली जैसे कार्यक्रमों ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। ट्रांजिस्टर हाथ में लिए बिना भारतीय परिवारों की सुबह और शाम अधूरी सी लगती थी। सर साहब
0: जी, आपने जैसा भी बताया तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है
1: जी,
0: कि अचानक से म्यूजिक बजना विविध भारती का पिटारा लेके आया है। पिटारा आज क्या लेकर आया है हमारे लिए, वो आवाज गूंज रही है मेरे कानों में।
1: और प्राय सभी लोग विविध भारती सेवा आकाशवाणी से लाभ उठा चुके हैं, उसके साक्षी रहे हैं। रेडियो ने लोगों को बहुत कुछ दिया है और बात इस पर हम आगे करेंगे आपसे, लेकिन जब बात हम कर रहे हैं
0: तो जयप्रकाश जी, आपने एक धुन छेड़ी है विविध भारती की, जयमाला पिटारा कार्यक्रम की, तो क्यों ना इसको और मोहक बनाया जाए, कोई गीत जो आप श्रोताओं के लिए अपनी पसंद से सुनवाना चाहें। सर
1: साहब, बात जब हम लोग विविध भारती के समय की कर रहे हैं तो 1957 ईस्वी की बात कर रहे हैं
0: जी,
1: तो हमारे श्रोताओं को भी याद होगा कि उस समय मदर इंडिया, नया दौर जैसी कई सुपरहिट फिल्में आई थी
0: जी, बिल्कुल,
1: जिसके गाने काफी लोकप्रिय हुए थे। तो क्यों ना उसी दौर का ये गाना हम लोग सुन लें।
0: कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे आप श्रोताओं को?
1: देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, दुख और सुख का आगमन होता ही रहता है, तो इसी पर आधारित एक गीत है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर
1: जहर तो पीना ही पड़ेगा।
0: बहुत सामाजिक फिल्म थी
1: जी, और काफी लोगों ने पसंद किया इस गीत को और फिल्मों को भी, तो

0: जयप्रकाश जी, अतीत की यात्रा के बीच अब बातें वर्तमान की, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव, अपनी यादों के बारे में?
1: जैसा कि आपने कहा कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक है मुझे याद है
0: जरा सा
1: जरा जरा, तो मुझे भी याद है वे आवाजें, स्टूडियो की वो हलचल, वे प्रसारण, श्रोताओं का अपनापन, वरिष्ठ जनों द्वारा कार्यक्रम निर्माण के दौरान दी गई सीख, प्रसारण कक्ष में बैठकर कार्यक्रम प्रस्तुत करना, श्रोताओं के पत्र प्राप्त करना, उन पत्रों को छांटना, विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से बातचीत करना और समाज के लिए उपयोगी संदेशों को जन जन तक पहुंचाना मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक अनुभव रहे हैं। उस समय प्रसारण की तैयारी, भाषा की शुद्धता, समय की पाबंदी और श्रोताओं के प्रति उत्तरदायित्व आदि वो बातें जिसका काफी मूल्य था, और इन मूल्यों ने मेरे व्यक्तित्व और कार्यशैली को भी प्रभावित किया।
0: जी,
1: और सरसार साहब, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आकाशवाणी की स्मृतियाँ केवल यादें नहीं बल्कि वे मेरे जीवन की अनमोल धरोहर है। वहाँ से मिली

0: सीख, अनुशासन, संवेदनशीलता, संवाद की कला एवं समाज के प्रति समर्पण आज भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिससे मुझे आकाशवाणी परिवार से जुड़े रहने और लोगों के हृदय तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। सरसार साहब
1: जी, जयप्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगा
0: जी जी
1: और ये पूछना चाहूंगा कि आप आकाशवाणी से कैसे जुड़े, आपका आगमन उद्घोषक के तौर पर आकाशवाणी से कैसे हुआ और ये किस सन की बात है और आपने किस किस केंद्रों पर अपना योगदान दिया।
0: उद्घोषक के पद पर मेरी नियुक्ति 20 जून 1992 ईस्वी को आकाशवाणी पूर्णिया में हुई और आकाशवाणी पूर्णिया में कार्य करते हुए मैंने जाना कि आवाज केवल शब्दों का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे लोगों के जीवन, भावनाओं और विचारों से जुड़े रहने का माध्यम भी बनती है। पूर्णिया केंद्र में स्टाफ की कमी रहने के कारण उद्घोषक के कार्यों के दायित्व के अलावा कार्यस्थ अधिकारी के दायित्व का निर्वहन भी मैंने एक लंबे अरसे तक किया,
1: यानी उद्घोषक का भी कार्य किया और कार्यक्रम अधिकारियों का भी काम किया।
0: हाँ जी, कार्यस्थ अधिकारी ड्यूटी ऑफिसर के रूप में और प्रोग्राम ऑफिसर में भी काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो उद्घोषक, कार्यस्थ अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, जिसमें कार्यस्थ अधिकारी के रूप में मैंने ज्यादा समय तक काम किया।
1: तो इन तीनों पदों पर आपने जैसे काम को संभाला आप कार्यालय के, तो ज्यादा चैलेंजिंग कार्य किस पद पर लगा आपको?
0: मेरा मानना है कि कोई भी पद हो
1: जी,
0: अगर आप निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करते हैं तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है
1: जी।
0: और हर काम एक चुनौती भरा होता है
1: जी।
0: जिस समय जिस दायित्व को विभाग ने मुझे सौंपा, मैंने अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी किया, पूर्ण निष्ठा से किया और निष्ठा से करने के कारण ही मुझे वहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम, बुजुर्गों के कार्यक्रम, इसके अलावा कानूनी सलाह, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम, स्वास्थ्य की बातें, मेहनत कष्ट लोगों के जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम, लोक सेवा, जन सेवा, विज्ञापन, चुनाव संबंधी कार्य और ऐसे बहुत से कार्य मुझे उन दिनों संपादित करने पड़े, जिससे मेरे ज्ञान में, मेरे कौशल में, मेरे अनुभव में काफ़ी वृद्धि हुई।
1: आपको मैं रोकना चाहूँगा, मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि जब बारिश का मौसम होता था, जब हवाएं तेज चलती थीं और मेरे पास एक मल्टी बैंड छोटा सा ब्लैक कलर का रेडियो रहता था, तो उसमें कभी कभी पूर्णिया आकाशवाणी भी पकड़ता था
0: जी,
1: तो उसमें गांधी कथा कार्यक्रम में मैं आपकी आवाज़ सुनता था और मुझे वो इतना भाता था और इतनी सीख देता था
0: जी,
1: मैं आपको बता नहीं सकता
0: जी। तो गांधी कथा कार्यक्रम भी मैंने किया है, उन सभी कार्यक्रमों का जिक्र तो मैं यहाँ उतना वक्त नहीं है कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि 32 वर्ष 2 महीने और 11 दिन मैंने आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी
1: जी।
0: और 32 वर्ष 2 महीने में मतलब 3 महीना मैं डाल्टनगंज में रहा
1: जी।
0: और एक बात मैं आपको बता दूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है पहली बात, और किसी भी व्यक्ति से जब कुछ आप सीखते हैं तो उसमें विनम्रता का भाव आना सबसे जरूरी बात है
1: जी।
0: तो हमारे आकाशवाणी पूर्णिया में जितने भी लोग थे
1: जी,
0: कुछ उसमें नए थे और पुराने लोगों के पास जो गुण था, जो अनुभव था, उस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी।
0: और उस अनुभव के चलते ही जब मैं आकाशवाणी डाल्टनगंज गया
1: जी,
0: तो वहाँ जाने पर एकदम विपरीत परिस्थितियाँ थी, चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों के बीच, यानी कि दिन में मैं कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने के लिए बेतला, गढ़वा, मतलब पलामू,
1: चुनौतीपूर्ण
0: जी, इन सारे क्षेत्रों में मैं भ्रमण करता था
1: जी।
0: और उसके बाद मैं लौट के आके कार्यक्रम बनाता था, फिर कार्यक्रम को मैं पेश करता था। तो हर दिन बनाइए, हर दिन खाइए, तो इसी सिद्धांत पर मैं वहाँ काम करने लगा और धीरे धीरे करके समझिए कि कुछ लोगों को मुझे प्रशिक्षित करने का भी मौका मिला विभागीय आदेश के अनुसार, ताकि प्रसारण कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
1: जो प्रसार भारती के नॉर्म्स हैं, रूल रेगुलेशन हैं, उन चीजों को समझाना और किस तरह से पेश करना है कार्यक्रम को, ये सारी चीजों का प्रशिक्षण आपने लोगों को दिया।
0: जी, तो कुछ अनुबंध पे जो लोग कार्यरत होते हैं अभी भी अनुबंध पर लोग काम करते हैं,
1: ताकि वैरायटी आ पाए।
0: जी,
1: अगर हम पांच आवाज अलग अलग सुनेंगे तो उनके अलग अलग थॉट्स होंगे, उनकी आवाज अलग होगी, कुछ जानकारियां मिलेंगी उनसे।
0: तो ये सारे अनुभव जो मुझे पूर्णिया में प्राप्त हुए, उस अनुभव का लाभ मुझे आकाशवाणी डाल्टनगंज में मिला, और आकाशवाणी भागलपुर में मुझे बहुत ही कम दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मात्र 10.5 महीने की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सानिध्य में आप लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला।
1: लेकिन यादगार तो होता है वो शुरुआती पल और आखिरी का पल, तो दोनों यादगार रहा, आपका पूर्णिया का पल भी और आकाशवाणी भागलपुर से जब आप सेवानिवृत्त हुए।
0: जी, और आप लोगों का जो प्यार स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और वही प्यार और स्नेह है जो आज श्रोताओं को हमें बताना चाहेंगे कि उसी प्यार स्नेह के चलते आज हम आपसे मुखातिब होकर के बातचीत कर रहे हैं। एक
1: ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमारा दावत कबूल किया और आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए अपनी यादों को साझा करने के लिए।
0: जी, और एक बात हम सरसार साहब यहाँ और भी कहना चाहते हैं कि आकाशवाणी से जो मुझको प्रेरणा मिली उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।
1: जयप्रकाश जी,
0: जी
1: आकाशवाणी से मिली प्रेरणा को आपने समाज में कैसे उतारा?
0: जी,
1: इस संबंध में अगर हम चर्चा करें तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, इस विषय पर हम आपको अतीत में लिए चलेंगे।
1: जी,
0: बात सन 2006 ईस्वी की है, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे। उसी दौरान उनकी और वाई सुंदर राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत 2020 नौ निर्माण की रूपरेखा पढ़ने का मुझे अवसर मिला। उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 297 में लेखक द्वय ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो उनकी कार्य योजना है,
1: कलाम साहब ने जो अपना थॉट दिया,
0: जी कलाम साहब ने जो अपना विचार दिया कि कैसे आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और इस विकसित राष्ट्र को बनाने में शिक्षक, बैंकर, डॉक्टर, प्रोफेसर, समाज के हर वर्ग के लोगों की क्या भूमिका होगी, शोध विकास प्रयोगशाला संस्थाओं की क्या भूमिका होगी, मीडिया की क्या भूमिका होगी। कहने का मतलब है कि देश के आम लोगों की क्या भूमिका होगी, देश के संगठनों की क्या भूमिका होगी, इन सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला।
1: जैसे एक मकान को बनाने के लिए सब लोग ईंट को अलग अलग करके जोड़ते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक संरचना तैयार होती है, वो एक बिल्डिंग बनती है। हर जो क्षेत्र है वो एक एक यूनिट है, एक ईंट है। तो उस पर ही उन्होंने जिक्र किया कि आप क्या क्या अपने देश को दे सकते हैं,
0: दे सकते हैं, और आपकी क्या भूमिका होगी एक विकसित राष्ट्र को बनाने में। उन्होंने साफ शब्दों में इन बातों का उल्लेख,
1: एक डॉक्टर क्या करेगा समाज के लिए, एक शिक्षक क्या करेगा, एक मीडिया कर्मी क्या करेगा।
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने कही है। तो अब मीडिया कर्मी की बात है, तो आप और हम सब लोग जानते ही हैं कि आकाशवाणी जब किसी व्यक्ति को आमंत्रित करती है, चाहे वो कलाकार हो, जो भी व्यक्ति हो जिनको अभी आकाशवाणी आमंत्रित करती है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा जाता है
1: कि आप जो है भारत के राष्ट्रपति के मेहमान हैं।
0: जी
1: जी,
0: तो यहाँ यह विचारणीय विषय है कि जब 2006 में जब मैंने पुस्तक पढ़ी थी और कलाम साहब उस समय देश के राष्ट्रपति थे और उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया, तो मीडिया की क्या भूमिका बनती है? भारत सरकार की ही मीडिया की हम बात करें, मैं भी आकाशवाणी में था, एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हम सब लोगों की तो भूमिका बनती है ना सर। तो उन भूमिका को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं।
1: जी,
0: तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना पुस्तक के आलोक में एक परिचर्चा का आयोजन किया जाए।
1: जी,
0: पुस्तक का नाम भारत 2020 नव निर्माण की रूपरेखा के आलोक में राष्ट्रोत्थान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो इसी विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, आकाशवाणी की उसमें भूमिका रही, कवरेज भी किए गए, और परिचर्चा के बाद लोगों से यह प्रश्न मैंने किया कि आपकी क्या भूमिका है, आपने कुछ विचार किया? कुछ दिनों के बाद मैंने ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो याद है कि कोई कार्यक्रम में मैं गया था
1: जी,
0: लेकिन विषय याद नहीं है और मुझे क्या करना है ये बातें मुझे याद नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब सही बतौर संयोजक होने के नाते मेरी क्या भूमिका बनती है, तो मैंने सोचा कि मुझे ही पहल करनी होगी। और भारत गांव का देश है
1: जी,
0: तो क्यों ना गांव से पहल की जाए, एक ऐसे गांव की खोज की जाए जो काफ़ी पिछड़ा हुआ हो
1: जी।
0: तो मुझे यह गांव मिला कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड में
1: जी,
0: जो तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ था
1: जी,
0: और सड़कें नहीं थी, लोग मर जाते थे अस्पताल जाते जाते, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गए तो
1: जी,
0: गर्भवती माताओं को दिक्कत होती थी, बहनों को दिक्कत होती थी। तो मैंने उस गांव का सर्वे किया, ग्राम भौगोलिक सर्वेक्षण एवं प्रबंधन नामक पुस्तक को मैंने लिखा
1: जी,
0: एक व्यक्ति से मैंने और सहयोग लिया
1: जी,
0: और उसके बाद श्रम दान द्वारा सड़क का निर्माण करवाया गया उस गांव के लोगों के सहयोग से, और फिर ग्राम सभा की बैठक बुला करके उस गांव को आदर्श और निर्मल ग्राम बना करके हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया।
1: तो ड्यूटी करते हुए और इस मतलब विकास के कार्य को आपने कैसे बैलेंस किया?
0: देखिए हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं,
1: अच्छा,
0: कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम
1: जी,
0: तो उसके हिसाब से मैं जाता था, ड्यूटी समाप्त करने के पश्चात मैं जाता था
1: जी,
0: रात में रुकने की नौबत आती थी तो मैं रुक जाता था
1: जी,
0: और फिर गांव के लोगों से बातचीत करके मैं कार्य को गति प्रदान करने की दिशा में
1: जी
0: पहल करता था।
1: कार्य में रहते हुए आपने समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया
0: जी, जी। और उसमें एक बात है और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कलाम साहब ने सन 1920 ईस्वी तक ही भारत को विकसित करने की बात कही है
1: जी,
0: और उसके बाद उसकी एक पुस्तक आई कलाम साहब की, भारत 1920 और उसके बाद
1: जी।
0: आज कलाम साहब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी प्रेरणा तो हमारे साथ,
1: साथ
0: है। तो उस अभियान को हम आदर्श ग्राम से लेकर के आदर्श प्रखंड तक पहुंचाने की दिशा में पहल किया, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक उस प्रस्ताव को मैंने पास करवाने की दिशा में पहल किया, लोगों के सहयोग से उस काम को आगे बढ़ाया भी गया और आदर्श ग्राम से आदर्श प्रखंड तक की हमारी ये यात्रा बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी।
1: तो अब तो आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो इसके बाद भी वहाँ और योगदान दे रहे होंगे
0: जी, मैं लगातार योगदान दे रहा हूँ। और यह भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब भारत सरकार भी 1947 ईस्वी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल कर रही है। तो आकाशवाणी की जो भूमिका रही वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही, आकाशवाणी ने लोगों को जागरूक करने की दिशा में पहल किया। और
1: आप अगर ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो किसानों तक सारी सूचनाएं सारी जानकारियां साझा करने में आकाशवाणी ने भी अपना एक अहम रोल अदा किया
0: जी, निश्चित रूप से। और मैं मानता हूं कि सफलता की इस पूरी यात्रा में आकाशवाणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आकाशवाणी ने मुझे समाज की जरूरत को समझने, लोगों से संवाद स्थापित करने और विकास के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की प्रेरणा दी। इसलिए मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक कार्य स्थल नहीं
1: जी,
0: बल्कि एक ऐसी पाठशाला है जिसने मुझे राष्ट्र निर्माण, जनसेवा और समाज के साथ निरंतर जुड़े रहने की प्रेरणा दी। मेरा मानना है कि सूचना तभी सार्थक है जब वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए।
1: मैं ये आशा करूंगा कि आपकी जो सोच है वो हर भारतीय की सोच बने
0: जी।
1: आज सोशल मीडिया और डिजिटल युग के दौर में क्या आपको लगता है कि रेडियो आज भी प्रासंगिक है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। माध्यम बदल सकते हैं सर
1: जी,
0: लेकिन संवाद की जरूरत और विश्वसनीयता का महत्व कभी कम नहीं होता। आज सूचना बहुत तेजी से फैलती है
1: जी,
0: हम सब लोग ने देखा भी है, लेकिन सही और संतुलित सूचना ही सही मायने में कारगर सिद्ध होती है। ऐसे समय में आकाशवाणी जैसी संस्थाएं समाज को सही दिशा देने और सकारात्मक संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है
1: जी।
0: रेडियो आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन प्रसारण के रूप में यानी नए रूप में भी उतना ही प्रासंगिक है
1: पॉडकास्ट जी,
0: न्यूज ऑन एआईआर आपने
1: जी, लाइव स्ट्रीमिंग वेव ओटीटी इस पे भी आकाशवाणी है।
0: तो यदि आधुनिक तकनीक और सामाजिक सहभागिता के साथ इसे और जोड़ दिया जाए तो क्या यह एक प्रभावी नोडल माध्यम नहीं बन सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश जी,
0: जी
1: आपसे बातें हुई लेकिन घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, तो आपसे ये मेरा आखिरी सवाल है कि कार्यक्रम के अंत में आप श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं?
0: इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में समाज को जोड़ने का जो कार्य किया है वो प्रेरणादायक है। आने वाले समय में भी यह जन जागरण, जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहे, यही मेरी शुभकामना है। मुझे याद है जरा जरा वह रेडियो का दौर था
1: जी।
0: हर आंगन में ज्ञान, भरोसे और अपनापन का शोर था
1: जी।
0: कहीं किसानों की चर्चा होती थी, कहीं संस्कृति की बात, कहीं शिक्षा का उजियारा था, कहीं देशभक्ति का साथ। आकाशवाणी ने जोड़ दिया जन जन का विश्वास, शब्दों से सेवा की उसने बना लिया इतिहास।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश मिश्र जी, आपने आकाशवाणी, समाज, गांव, जन भागीदारी और विकसित भारत से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के समक्ष रखे। हमें विश्वास है कि आपके विचार श्रोताओं को नई प्रेरणा देंगे। इसी के साथ आज की ये विशेष भेंटवार्ता मुझे याद है जरा जरा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी और तमाम श्रोताओं को।

मुझे याद है जरा जरा। आप सुन रहे थे आकाशवाणी एट 90 के तहत ये विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपने सुना आकाशवाणी भागलपुर के सेवानिवृत्त उद्घोषक जयप्रकाश मिश्र से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे मोहम्मद सरशार अहमद। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शामिल होते हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी लोक में। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती केई।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नारी लोक कार्यक्रम में। बहनों, बच्चे समाज का सबसे संवेदनशील हिस्सा होते हैं। इनका मन अत्यंत कोमल, निष्कपट और जिज्ञासु होता है। इनका मन एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर किसी भी घटना या दृश्य का गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे बच्चे जो युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, शोषण और अन्य प्रकार की आक्रामक गतिविधियों के कारण प्रभावित होते हैं, उनकी पीड़ा और कष्टों के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए

प्रत्येक वर्ष 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। इसका मूल उद्देश्य उन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करना था जो सशस्त्र संघर्षों और हिंसा के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए थे। समय के साथ इसका दायरा बढ़ा और अब ये दुनिया भर में हिंसा और उत्पीड़न के शिकार सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। इन घटनाओं का उनके मन और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे उनमें भय, चिंता और सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। इनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी आती है। ये तनाव, अवसाद और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कुछ बच्चों में क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। नींद की समस्या, थकान, गंभीर हिंसा की स्थिति में शारीरिक चोट या विकलांगता भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बहनों, उन पर शैक्षिक प्रभाव भी पड़ता है। पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, विद्यालय में प्रदर्शन में भी कमी आती है। ऐसे बच्चे दूसरों से मिलने में संकोच करने लगते हैं। वे समाज में अलग थलग महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ये प्रभाव दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। बनो ऐसे बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना समाज की ही जिम्मेदारी है। ऐसे बच्चों को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन्हें इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, इनके शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही अगर इस तरह की घटनाएं कहीं भी हमारे इर्द गिर्द घटित होती हैं तो तुरंत उनका रिपोर्ट हमें करना चाहिए। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं बहनों और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है?
5: मिठाई।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: अंतराल के बाद बहनों, अब आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। कवित्री हैं राधा।
9: कि अब दूसरी शादी कर।
10: नमस्कार, पेश है मेरी पहली रचना। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, लोग शब्दों से इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का, लोग शब्दों से इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का, वो अपनी मोहब्बत को सांसों में जिए जाते हैं। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, मेरी हर परेशानी को मुझसे पहले पढ़ लेते हैं वो, मेरी आँखों की नमी अपने पलकों में सोख लेते हैं वो। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, मेरे हर एहसास को मुझसे पहले जी लेते हैं वो। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, मेरी खामोशी को भी खामोशी से पढ़ लेते हैं वो। मैं हमेशा मुस्कुराती रहूं इसके भी बहाने ढूंढ लाते हैं वो। खो न जाए दुनिया की भीड़ में पहचान मेरी, ये सोचकर मेरी शख्सियत को खुद में समेटे जाते हैं। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, मेरे लम्हों को सदियों में जिए जाते हैं वो। मुझे संवारने की खातिर आईना भी बन जाते हैं वो। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, मेरे हर जज्बात को मुझसे पहले जी लेते हैं वो। मेरी खुशियां हथेली में और दर्द दिल में समेट लेते हैं वो। कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे, मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए जीते हैं वो। अब कैसे कह दूं कि वो प्यार नहीं करते मुझसे। मेरी अगली रचना, पत्ता और मैं। देखकर शाख से गिरे पत्ते को मुझे लड़की होने का एहसास हुआ। कितनी खामोशियां सुना गया वो पत्ता जब बोलने पे आ गया। वो तो हमेशा के लिए टूट गया पर मुझे तो टूट कर फिर जुड़ना है। वो भी नहीं जानता मैं भी नहीं जानती हमें किस मंजिल की तलाश में जाना है। उफ वो भी नहीं करता आहे मैं भी नहीं भरती। क्या है उस पार जो मैं देख पाई, विवस्ता ही जिंदगी से जुड़ी हुई पाई। काश उसकी तरह मैं भी एक बार टूटती जिंदगी के मझधार से एक बार ही जूझती। भूल दुनिया के फरेबी जालों को खुली हवा में सांस तो ले पाती। कितनी जल्दी उड़ निकला वो पर मुझे तो उड़ते जाना है उस सोने के पिंजरे तक कैद करने के लिए कर रहा जो प्रतीक्षा मेरी। मेरी अगली रचना आशियां बनाना चाहती हूँ। एक आशियां बनाना चाहती हूँ खुशियों का, जिसमें खिलखिलाते सपने हो, जिसमें खिलखिलाते सपने हो तुम्हारी उम्मीदों का। पूरी हो हर ख्वाहिश तुम्हारी, सांसें तुम्हारी धड़कन मेरी। पूरी हो हर ख्वाहिश तुम्हारी, सांसें तुम्हारी धड़कन मेरी। बिन कहे सुन ले हम एक दूसरे की बातें, बिन कहे हम सुन ले एक दूसरे की बातें। एतबार की नींव पर, एतबार की नींव पर खरी हमारे घर की इमारत हो। ना प्यार में सौदा तुम करो, ना प्यार में सौदा तुम करो, ना अपनी अपेक्षा का बोझ मैं तुम पर डालूं। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां कुछ तुम उठा लो, कुछ मैं समेट लूं खुद में। घर घर हमारा घर जो तुम्हारा मेहनत और समर्पण है,

0: घर जो मेरा संपूर्ण जीवन है, बस उसमें उल्लास भरना चाहती हूँ, बस उसमें उल्लास भरना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर से जीना चाहती हूँ, पतंग बन उड़ना चाहती हूँ आसमान में, पतंग बन उड़ना चाहती हूँ आसमान में, पर डोर तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि एतबार की सबसे बड़ी परिभाषा हो तुम, मेरे आशियाने की नींव हो तुम, बस तुम ही तो हो जिसे लेके मैं एक आशियाना बनाना चाहती हूँ, बस तुम ही तो हो जिसे लेके मैं एक आशियाना बनाना चाहती हूँ, खुशियों का जहाँ यकीनन खिलखिलाते सपने हो तुम्हारी उम्मीदों का। मेरी अगली रचना, दर्द लिखना चाहती हूँ, खुद के अंदर बंद सैलाब खोलना चाहती हूँ, खुद के अंदर बंद सैलाब खोलना चाहती हूँ, बांध जो बना रखा था, बांध जो बना रखा था खुद के दरमियाँ, मैं वो बांध खोलना चाहती हूँ। कैसे कह दूँ कि मुझे डर नहीं लगता, देखकर मौत का मंजर जब मेरा दिल दहलता है, वो खौफ लिखना चाहती हूँ, हाँ दर्द लिखना चाहती हूँ। दिल धड़कता है जब हवाएं तेज चलती है, हर सांसों में छिपी अपने घर की महफूजियत की दुआएं लिखना चाहती हूँ, दर्द लिखना चाहती हूँ। दर्द खौफ और खोने का भय मेरा, दर्द खौफ और खोने का भय मेरा, हाँ बंद हूँ मैं जिस कफस में, हाँ बंद हूँ मैं जिस कफश में, वो खोलना चाहती हूँ। हाँ।
1: अभी बहनें सुन रही थीं पूर्व प्रसारित काव्य पाठ, कवित्री थीं राधा। अब आइए बहनों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद बहनों अब आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित कहानी। कहानीकार हैं संयुक्ता भारती।
1: गांव में दोपहर को आराम करती औरतें बात ही बात में कितना कुछ कह जाती हैं। लगता है जैसे किसी एक का दुख सबका दुख बन जाता है और किसी एक का सुख सबका सुख। उस दिन भी यही हुआ। इतवरिया काकी ने सबको एक तरह से खुशखबरी ही दी, कहा अब उसके आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। जिस तरह से काकी ने यह जानकारी दी, लगा कि कितना बड़ा जप तप से यह संभव हुआ है। इतवरिया काकी की हम उम्र कहिए, लेकिन रिश्ते में जेठानी ने पूछ ही लिया। इतवरिया काकी ने कहा कि सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। असल में प्रभा की शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन संतान का मुंह नहीं देख पाई थी। रतन के पिता मुसाफिर काका ने रतन को खूब समझाया कि अब दूसरी शादी कर लो, ई बांझिन से घर नहीं बसने वाला। मुसाफिर काका ने तो दूसरी शादी के लिए लड़की भी तलाश लिया। कोस भर दूर के गांव में लड़की बस 20-22 की ही थी। उसका पिता कर्ज में डूबा हुआ। मुसाफिर काका को पूरा यकीन था कि अब तो बात बन ही जाएगी। आखिर किसका मन नहीं करता कि खानदान चलाने वाला कोई हो। तो एक दिन उन्होंने लाज शर्म छोड़कर रतन से पूछ ही लिया, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लेकिन यह समझो कि खानदान चलाने वाला न हो तो पढ़ाई लिखाई धन संपत्ति किसी काम की नहीं है। मेरी मानो तो अब तुम एक निर्णय ले ही लो। 10 साल कम समय थोड़े न होता है। चौराहे पर परचून की दुकान चलाने वाला रतन तब थका मांदा लौटा ही था कि उसके पिता ने घर में घुसने ही जैसे कहा। उसे लगा कि पिता को पलट कर जवाब दे दे कि गांव में कितने बच्चे हैं जो अपने खानदान का नाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आदमी का क्या है, वह रिश्तों का लिहाज करता है। पिता से मुंह लगाना कोई अच्छी बात नहीं। रतन ने पल भर सोचा और कहा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। घर बसाएगी तो यही बसाएगी और नहीं बसाएगी तो ना बसाए। हमको अब और कुछ नहीं कहना। ओसारे में धान फटक रही इतवरिया काकी बाप बेटे की बात सुन रही थी। हालांकि चाहती तो वह भी यही थी, यदि प्रभा बच्चा जनने के योग नहीं है

0: दूसरी शादी में कौन सी बुराई है? उसे उत्तरी टोले के रामचरित्र की कन्या की याद आई। रामचरित्र ने तो 5 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी के बाद जैसे ही घर में किलकारी गूंजी तो फिर पहले की गोद भी खाली नहीं रही। इतवरिया काकी को लगता था कि घर में कोई दोष है जो शायद दूसरी बहू के आने के बाद ही दूर होगी। लेकिन उस दिन बाप बेटे की बात सुनकर उसके मन को धक्का लगा था। असल में एक संतान की बात छोड़ दें तो प्रभा किसी भी गुण से अपूर्ण नहीं थी। खाना बनाने के मामले में हो तो साक्षात अन्नपूर्णा थी। जब से विवाह करके आई, लक्ष्मी के जैसे पांव लेकर आई। डीपर वाली जमीन की डिग्री हो गई, बेरोजगार रहने वाले रतन की दुकान चल निकली और अब तो उसकी दुकान में 5-5 नौकर खटते हैं, तब भी ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। प्रभा झोपड़ी में आई थी और इन 10 सालों में झोपड़ी महल बन गई थी। एक दिन इतवरिया काकी ने अपनी मन की बात प्रभा से कह दी। हालांकि इतना कड़ा वचन बोलना आसान नहीं होता, तो उसने अभिनय करते हुए बात शुरू की। कन्या, गांव जिवार में कितना कुछ बदल गया है। आजकल तो जो ब्याह करके आती है दूसरे दिन गांव में ऐसे मटकती है जैसे गांव की बहू न हो बेटी हो। प्रभा ने रसोई से पूछ ही लिया, किसकी बात कर रही हैं माँ जी? अब कोई एक हो तो कहें, जिसको देखो सब एक ही तरह के फैशन में चूर हैं। सुना है सुरेंद्र की कन्या को खाना बनाना भी नहीं आता, बेचारी फुलमतिया को खुद खाना बनाकर पुतोह को खिलाना पड़ता है। यह कोई बात हुई? तब तक प्रभा अपनी सास के पास आ गई थी। मोढ़े पर बैठने से पहले चाय का गिलास पकड़ाते हुए बोली कि इसमें क्या गलत है, पढ़ी लिखी लड़की है, खाना बनाना नहीं आया होगा। सबकी किस्मत में मेरे जैसे थोड़ी ना होती है कि पढ़े लिखे के समय में ही विवाह कर दिया जाता है। तो क्या तुमको कोई गम है कि तुम्हारी शादी हमारे यहाँ हो गई? प्रभा को लगा कि अब वह यहाँ से बात आगे बढ़ा सकती है। गम नहीं है माँ जी, जो मिला सो ठीक ही है, अब गम के सहारे आदमी पूरा जीवन कैसे जी सकता है। फिर मैं तो खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला है। यह तो मैं ही जानती हूँ कि सास ससुर का सुख क्या होता है, और आप तो खुद भी कितना अच्छा खाना बनाती हैं, प्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तो तुम जब बीमार पड़ती थी तब की बात थी, खाना बनाने में तुम्हारा कोई जोर नहीं गांव में। मैं तो गांव की सभी औरतों को चुनौती देकर यह बात कहती हूँ कि कोई है जो जोड़ा लगा दे। प्रभा के चेहरे पर नाटकीयता बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ प्रभा इसे रोज की तरह का संवाद समझ रही थी। कुछ देर बाद रहने के बाद इतवरिया काकी ने कहा, घर सूना सा लगता है कन्या, तुम्हारे दुख नहीं होता? प्रभा जानती थी कि उसकी सास कुछ न कुछ जरूर कहेगी। वैसे भी एक बड़े से घर में दोपहर के समय उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता था। पूरा घर खाली होता और काटने को दौड़ता है। प्रभा ने खुद को संभालते हुए कहा, अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं तो कह के थक गई उनको, और वह डॉक्टरनी भी थक गई, जांच भी हो गया, उनको तो बस इलाज की जरूरत है। 2-4 महीना दवाई खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही समझाइए ना माँ जी।
1: अभी बहनें सुन रही थीं पूर्व प्रसारित कहानी, कहानीकार थीं संयुक्ता भारती। अब आइए बहनों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नारीलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंती।

0: बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखते हैं,
1: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है, है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप।

0: लखमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है।
0: जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
0: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति

0: मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
5: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो।
5: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका,
4: इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं।

0: फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
0: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
0: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
0: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
0: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
0: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओ भरत, अच्छा तो ये बात है।
1: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
1: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
0: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ।
0: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।

0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं।

0: आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
2: मुझे मिल गया।
1: हाँ क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
3: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: कहते तो तुम ठीक हो,
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो, देखते हैं।
2: ठीक है आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
2: हाँ भाई
5: भीड़ तो है,
4: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं।
5: अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब हट जाइए।
5: आ गए
6: यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
2: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
2: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
2: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, हाँ, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
2: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
2: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
6: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
2: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
2: अरे हां, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अरविंद कुमार यादव के गाए लोकगीत।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 1:20 पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी चार टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में महिला नियमित योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
1: तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से योग महिलाओं को निशुल्क सिखाते हैं ताकि हमारा कम्युनिटी, हमारा समुदाय जो है निरोग रहे और हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
0: उन्होंने कहा कि स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद अब वे अन्य लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैं। वहीं सविता कुमारी ने भी योग से स्वास्थ्य में सुधार होने का अनुभव साझा किया और लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की।
2: मेरा नाम सविता कुमारी है, मेरा सीओ डी नियापुर है। योग बहुत अच्छा चीज है, योग करना चाहिए। योग से क्या है कि शरीर हल्का लगता है, मेडिसिन खुल जाती है और शुगर है, थायराइड है, ये बीपी है, सब कंट्रोल रखती है।
0: केंद्र सरकार के मुस्कान कार्यक्रम के तहत रांची का सदर अस्पताल अब नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन में अस्पताल ने 96.1% अंक हासिल किए। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पेडियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक ओपीडी को भी उत्कृष्ट अंक मिले। अस्पताल प्रशासन ने इसे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। जेटेड में भाषाओं के चयन को लेकर गठित समिति की बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जेटेड केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों की स्थायी भाषाई और सांस्कृतिक समझ का आकलन करने वाली पात्रता परीक्षा है। वहीं मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने की वकालत की।
3: वैसे जिले जहां जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है वहां कम से कम आप हिंदी भाषा को जो तो अवश्य जोड़ी। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि संख्या बल पर किसी नीति का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो धरातल की वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर वो कोई सापेक्ष निर्णय लेंगे।
0: जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेटेट के कुछ अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनुपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई होने की सूचना पर ऐसा निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उत्तर रेलवे ने अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच वर्जन 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया है। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कवच नेटवर्क 445 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो भारतीय रेल में किसी एक खंड पर स्थापित सबसे बड़ा कवच सिस्टम है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता को और मजबूत करेगी। कोडरमा विधायक मीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कोडरमा थाना के सामने रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। एसडीओ निर्मल सोरेन ने बताया कि मामले में अब तक 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।
4: ये घटना हुई है, यहाँ कोडरमा जिला के लिए बहुत ही खतरनाक है और घटना की गंभीरता को देखते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी नामजद अभियुक्त है मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए।
0: जमशेदपुर के टाउन

0: हॉल सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बूथ लेवल एजेंट बीएलए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
1: और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है, जो स्वरूप है, अब बीएलए 2 से प्रारंभ होगा। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी, और हमारा जो सबसे मजबूत जो कमेटी होगा वो कमेटी हमारा बूथ कमेटी होगा, जिसके माध्यम से हम राज्य के विकास को और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा पाएंगे।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 128 अंक बढ़कर 74,474 पर और निफ्टी 43 अंक बढ़कर 23,449 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के जेएसपीए ओवल ग्राउंड में शुरू हुई झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले दिन कोल्हान डायनामोज और संताल चैलेंजर्स ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनामोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में संताल चैलेंजर्स ने पलामू वॉरियर्स को 6 विकेट से पराजित कर दिया। जेएससीए पदाधिकारियों ने कहा है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस लीग में भाग लेने वाली सभी 4 टीमों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जापान के ताकामिगाहारा में खेले जा रहे पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में भारतीय जूनियर टीम का सेमीफाइनल मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। भारत ने पूल ए में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम 4 में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान की टीम पूल बी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की नजर पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाने और खिताब जीतने की अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी 4 टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं अरविंद कुमार यादव।

AIR at 90. संदेशों के बाद एक बार फिर शामिल होते हैं लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं अरविंद कुमार यादव।

अरविंद कुमार यादव के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल। आज आप सुनेंगे इसकी दूसरी कड़ी। लेखक रमेश रमण और प्रस्तुत करता है दासमती चार्टर और अशोक शरण।

जय गंगा मैया, यात्रियों का जय घोष गंगा की शत सहस्त्री गौरव गाथा का प्रतीक है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य गंगा के तट पर स्थापित हुए थे। गंगा को सदैव इस बात पर गर्व रहेगा कि उसी ने कुरुपांचाल प्रदेश का अंग वंग आदि प्रदेशों के साथ गठबंधन कराया। वाल्मीकि और व्यास ने गंगा को प्रणाम किया होगा। बुद्ध और महावीर ने गंगा का आभार

आना होगा। अशोक समुद्रगुप्त ने उसमें स्नान किया होगा। कालिदास ने उसके तट पर खड़े होकर देखा होगा कि किस प्रकार लोक माता गंगा

0: कई सहायक नदियों को अपनी गोद में मिलाती है और इन सहायक नदियों में प्रमुख है यमुना।
1: गंगा यमुना का मिलन प्रयाग यानी इलाहाबाद में होता है, इसलिए उस स्थान को अति पवित्र माना गया है। इसी स्थान पर सरस्वती भी आकर मिलती है।
0: गंगा यमुना के मिलन को देखकर महाकवि कालिदास अपनी लेखनी में एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। 14 वर्ष के वियोग के बाद पुष्पक विमान में बैठे भगवान राम नीचे गंगा यमुना के संगम का दृश्य देखकर माता सीता से कहते हैं।

0: हे निर्दोष अंग वाली सीते, देखो इस गंगा के प्रवाह में यमुना की तरंगे धसकर प्रवाह को खंडित कर रही हैं। ऐसा दिखता है मानो मोतियों की माला में पिरोए हुए इंद्र नीलमणि मोती की आभा को धुंधला कर रहे हों। ऐसा लगता है मानो श्वेत कमल के हार में नीले कमल गूंथ दिए हों। मान सरोवर को जाते हुए श्वेत हंसों के साथ कृष्णवर्ण कांदव पक्षी उड़ रहे हों। मानो श्वेत चंदन से लिपी हुई भूमि पर काला गरु की पत्र रचना की गई हो। मानो चंद्र की प्रभा के साथ छाया में लीन अंधकार की क्रीड़ा हो रही हो। शरद ऋतु के मेघ के पीछे से छिद्र में से आकाश की नीलिमा जरा जरा सी दिख रही हो। मानो महादेव जी के भस्म भूषित शरीर पर काले काले सांपों के आभूषण धारण करा दिए गए हों।
1: गंगा यमुना के मिलन की सुंदरता उस समय कैसी रही होगी, जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अनूठे रूप में किया। किंतु अब शायद गंगा का वो रूप हमें देखने को नहीं मिलता, कारण गंगा की महत्ता को कम कर हम तेजी से उसे प्रदूषित कर रहे हैं।
0: अनेक नदियां हैं, संगम है, पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। एक भोजपुरी विवाह गीत में गंगा यमुना के मिलन गीत का वर्णन इस प्रकार से किया गया है।
1: गंगा उमड़ाई यमुना उमड़ाई, घोंघे और सेवार भी उमड़ाए, केवल एक कन्या का पिता ही नहीं उमड़ा।

0: गंगा के किनारे बसने वाले लोगों के जन्म विवाह जैसे संस्कारों में गंगा का शामिल होना अति अनिवार्य है। बिना गंगा के रस्म पूरी भी नहीं होती। अब जैसे इस गीत में गाया गया है,
1: गंगा का पानी जोरों से लहरा रहा है, लिली घोड़े पर चढ़कर दूल्हा उस पार जाने की सोच रहा है। पिता के रोने से गंगा में बाढ़ आ गई, माता के रोने से अंधेरा छा गया, भाई के रोने से चरण भीग गए।

गंगा घाटी के लोगों के जीवन का प्रत्येक पल संगीत के सांस पर थिरकता है। गीत ही लोक जीवन को रागात्मक बनाते हैं। यही रागात्मकता उसे ऊर्जा प्रदान करती है। वो लोग विषम परिस्थितियों में भी जीने का साहस नहीं छोड़ते। इन लोगों के बारे में एक कहावत है कि इनका बोलना ही गीत है और चलना नृत्य। सचमुच गंगा घाटी के ग्राम जीवन की धड़कनें उनके गीत एवं नृत्य ही हैं।

दूर तक फैला हुआ क्षितिज, हरे भरे खेतों, पहाड़ों के बीच से बहती गंगा की पवित्र धाराएं, भारतीय लोकमानस में इस प्रकार रची बसी हैं कि लोगों ने उसे मानवी का रूप दे दिया है। गंगा जी का श्रृंगार वर्णन पूजा करती महिलाओं के इस गीत में देखा जा सकता है। गंगा मैया के माथे पर टिकुली शोभा दे रही है। गंगा मैया पियरी पहने हैं, गंगा मैया नथिया पहने हैं। गंगा मैया की बाहों पर बाजूबंद और गले में हंसुली शोभा दे रहे हैं। सचमुच गंगा के इस रूप लालित्य की कल्पना अद्भुत है।

0: गंगा भारतीय लोक जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में व्याप्त है। मां रोती है तो गंगा बह जाती है, विरहिणी वियोग का आक्षेप गंगा पे लगाती है। किसी ने कोई पाप या सामाजिक अपराध किया तो गंगा जल छिड़क दो। बाबा का अंतिम समय है तो उन्हें गंगा जल पिलाओ। सचमुच गंगा घाटी के लोगों का जीवन गंगामय है। गंगा के बिना उनकी संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
1: विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। गंगा के किनारे बसने वाले लोगों का मानना है कि बिना गंगा मैया के आशीर्वाद के विवाह जैसा शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता।
0: विवाह भले ही गंगा मैया की कृपा से होता हो, पर विवाह के बाद सास बहू व ननद का ताना बाना चलता ही रहता है। इस विवाह गीत में ननद अपनी भाभी की बुराई अपनी माँ से करती है और फिर सास अपनी बहू को कोसती है।

0: गंगा भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। उद्गम से सागर तक जितने भी भाषा क्षेत्र हैं, वहां के संस्कारों, ऋतुओं एवं सामाजिक उत्सवों से जुड़े गीत एक जैसे हैं। सभी गीतों का भाव एक जैसा है, केवल भाषा का अंतर है, और यही हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
1: अगली कड़ी से हम आपको गंगा की सैर कराएंगे और आंचलिक आधार पर गंगा के गीतों की महत्ता के बारे में बताएंगे।

अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक रमेश रमण, प्रस्तुतकर्ता थे दासमती चार्टर और अशोक शरण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम पटना केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज तड़के अगलगी की घटना में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के आईसीयू में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन पार्कों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और 50,000 एकड़ रकबा का भूमि बैंक बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में लगाए जाएंगे। इधर खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी।

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से खात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आज सवेरे आगजनी के वाक़े में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमलों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा सके। सीनियर SP कांतेश मिश्र ने बताया कि इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। इधर वजीर आला सम्राट चौधरी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने महलुकीन के सबसे करीबी वर्षा को 4-4 लाख रुपये इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। इस बीच वजीर सेहत निशांत ने भी हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की आला सतही जांच होगी और जो भी इसके लिए कसूरवार पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रियासत में 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क की तामीर होगी। वजीर आला सम्राट चौधरी ने इन पार्कों की तामीर के लिए ज़मीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और 50,000 एकड़ रकबा का ज़मीनी बैंक बनाने का अफसरों को हिदायत की है। वजीर आला ने अफसरों को मुतल्लिका महकमों के साथ राबता बनाकर सनतों के क़याम के लिए ज़मीनी तहवील के काम में तेज़ी लाने की हिदायत की। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों की तरदीद की है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी आधार कार्ड होल्डर को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। PIB की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। नौजवान

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
1: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज

0: शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। द्वारा है बहुत से स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये

0: तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की

0: जून के आने की संभावना आधार हुए भूमि बारिश है पर मॉनसून मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले दो तीन दिनों के दौरान लक्षद्वीप तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छत्तीसगढ़ हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम बिहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म गाइड में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन।

गंगा जमुना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार शकील बदावनी, संगीतकार थे नौशाद। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ खास संदेश।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: संदेशों के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म साथी से। गायिका लता मंगेशकर, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है और धुन बनाई है नौशाद ने।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
1: करो,
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: संदेशों के बाद आइए सुनते हैं चित्रपट से कार्यक्रम का अगला गीत।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का गीत, रवि का संगीत, गायिका लता मंगेशकर, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म खानदान से।

मेरा साया फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार राजा मेहदी अली खान, संगीतकार थे मदन मोहन। और इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है तरंग कार्यक्रम। आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और

0: प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से,
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, एक हमारे
0: लीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वैसे

0: वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
1: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
0: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
1: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
0: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
1: क्या बात है भाई,
0: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं।
1: जी, तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशील महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक बुरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहां जरूरी है और कहां नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: कहां हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहां हमें गले,
1: खास तौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हम।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी।
0: आम बहुत खास है,
1: कहने को आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो, काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं,
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता है जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा लंगड़ा ये आम हमने खाए हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खासतौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम, तो उसमें जो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत
1: नहीं, जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है।
0: अभी लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम,
1: हाँ,
0: बहुत मीठा आ रहा
1: है, केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का

0: लगाए हुए बाग हैं
1: जी,
0: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप
0: पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत, जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है, मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है, अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते थे,
1: और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता जी।
0: हाँ, और आप तो कह रही कि एक आम दो फाक,
1: अब तो ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, उसमें पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना,
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था, कोई भी
1: केमिकल नहीं,
0: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
1: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था, अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी जैसे आमरस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे
1: और आम का के यहाँ पे
0: और आम का पना भी बनता था। और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो।
0: तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
1: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा आम पापड़, आम पापड़ उसमें डाल के उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए,
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है, सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है, इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठकर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी, बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहां जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है। जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है,
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहाँ तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दे, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 2867 0288 और 0224002466 यानी 400-2462। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का आपका मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर एंड एसपी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब एमपी था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: हाँ, एनंदी मी मीरो मी नच्चुकुन्नी पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको को थोड़ा छोटा बोलिए।
1: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा।
0: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और चालू राजा।
0: बिक्रम सिंह सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तकों में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं हुई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे, ये खत्म हो गए?
1: जी सर बिल्कुल, 3 दिन बाकी हो सर, वो
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जे बताओ?
1: हमको सुनना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नंबर है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा तो हमारा।
0: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: जी आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़
1: जी
0: रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
1: जी
0: अब
1: बहुत ज्यादा।
0: हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी
0: हाँ,
1: अपने साथ लेके जाए
0: बहुत सही,
1: और
0: बिल्कुल
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले। गाना
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: शानदार गाना एस डी बर्मन का संगीत जी। कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या दर्द था
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर, बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं?
0: नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से

0: क्या बात है जी। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी।
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली और सब। आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी,
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद हैं आपको?
1: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले याद है, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
1: क्या बात है।
0: जी शुक्रिया।
1: बचपन से आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
1: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू।
0: शुक्रिया, हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। एकदम
0: जी जी बताइए,
1: बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं
1: हाँ,
0: जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंक के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662, अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक प्रसारण युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मानसी और लेकर आई हूं आपके लिए आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम युवाओं की वाणी युवाणी। दोस्तों, आज का दिन गुरुवार है और जून महीने की शुरुआत भी हो चुकी है। जून का महीना आते ही मौसम का मिजाज भी बदल जाता है, सूरज की तपिश तेज होने लगती है और दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रभाव बढ़ता जाता है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर के समय गर्म हवाएं यानी लू लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। ऐसे मौसम में विशेष रूप से युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, घर से बाहर निकलते समय सिर को ढकना, हल्के और सूती कपड़े पहनना तथा धूप में अधिक देर तक रहने से बचना बहुत ज़रूरी है। बढ़ती गर्मी में केवल हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। जल स्रोतों का स्तर कम होने लगता है और पानी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए हमें जल संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद न करें और अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें। मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, जिसमें हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण शिकार के निर्दोष बालकों का दिवस के बारे में। उसके बाद होगा स्तंभ डेली ट्रिविया। साथ ही दोस्तों, आज के कार्यक्रम में होगा गुरुवार के खास स्तंभ ओबी के अंतर्गत सुनाएंगे आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित यूथ आउटरीच प्रोग्राम प्रसारण। साथ ही फिल्मी गीतों को भी शामिल किया है हमने आज के कार्यक्रम में। और अंत में इतिहास दर्पण, समसामयिक की डेली ट्रिविया, फन फैक्ट और समापन बातचीत के साथ हमारा संपन्न होगा आज का कार्यक्रम। दोस्तों, आज हम चर्चा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण के शिकार निर्दोष बालकों का दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 4 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करना है जो युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, संघर्ष और अन्य प्रकार के आक्रमणों के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का सामना करते हैं। बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उन्हें सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रेमपूर्ण जीवन का अधिकार है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में आज भी बच्चे संघर्षों और हिंसक घटनाओं के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। ऐसे हालात में न केवल अपने बचपन की खुशियों से वंचित हो जाते हैं बच्चे, बल्कि उनके विकास और भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है दोस्तों कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हमें ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां हर बच्चा भय और हिंसा से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार कर सके। युवाओं की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। वे जागरूकता फैलाकर मानवता और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देकर तथा बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाकर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा एक शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। चर्चा को यहीं विराम देते हुए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
2: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
1: तो लेन देन?
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
2: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मित्रों, अब बारी आती है हमारे दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि विश्व का पहला रेडियो स्टेशन कब और कहां खुला था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तब तक के लिए यूं ही बने रहिएगा अपनी रेडियो दोस्त मानसी के साथ। अब समय है गुरुवार के खास स्तंभ ओबी के अंतर्गत एक विशेष प्रस्तुति का। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित यूथ आउटरीच प्रोग्राम प्रसारण हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं इस विशेष आयोजन का प्रसारण। एक विशेष पहल यूथ आउटरीच प्रोग्राम के लिए जमा हुए हैं। इस प्रोग्राम का सीधा सा उद्देश्य है दोस्तों, आपके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना। आज हम आकाशवाणी का गौरव मना रहे हैं, जिसने पिछले 90 वर्षों से भारत के हर घर, हर गांव और हर दिलों में जगह बनाई है। यह सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, साहित्य और समाज को जोड़ने का एक मजबूत धागा है। आकाशवाणी का इतिहास किसी सुनहरी दास्तान से कम नहीं है। इसकी शुरुआत 1930 के उस दौर में हुई दोस्तों, जब मैसूर रियासत में डॉक्टर एम बी गोपाल स्वामी ने महज 300 वाट के छोटे से ट्रांसमीटर से रेडियो प्रसारण शुरू किया और इसे नाम दिया आकाशवाणी। दोस्तों साल 1936 तक आते आते यह नाम पूरे देश की आवाज़ बन गया। रेडियो के तीन बुनियादी मंत्र थे, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। साल 1951 में इसे पंचवर्ष योजना का हिस्सा बनाया गया, जिसने इसके विस्तार को पंख दे दिए। लेकिन दोस्तों असली क्रांति आई साल 1957 में, जब विविध भारती सेवा शुरू हुई। देखते ही देखते फिल्मी गीतों और फरमाइशों कार्यक्रम ने रेडियो को घर घर का चहेता सदस्य बना दिया। लोकप्रियता ऐसी थी कि लोग ट्रांजिस्टर को अपने साथ लेकर चलते थे। इतिहास के पन्नों में एक और यादगार तारीख दर्ज है, 23 जुलाई 1969। जी हाँ दोस्तों, यह वही दिन था जब इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, और ठीक उसी दिन आकाशवाणी दिल्ली से एक नए कार्यक्रम का जन्म हुआ, आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भी इसी ऐतिहासिक युवाणी कार्यक्रम के एक होस्ट के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आकाशवाणी का योगदान सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसने महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान साहित्यकारों की रचनाओं को सहेज कर रखा है। आज भी हमारे पास रामचरितमानस का वह अद्भुत गायन सुरक्षित है, जो कभी हमारी सुबह का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन के बात के जरिए रेडियो की इसी ताकत का उपयोग करते हैं। दोस्तों अब हम ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं हैं, आप हमें अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप, यूट्यूब और हमारी वेबसाइट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। भागलपुर के मेरे साथियों, आप हमें मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। आज का ये यूथ आउटरीच प्रोग्राम आपके लिए अपने विचार रखने का एक जरिया बन के आया है। यहाँ आप सबके अलग अलग विचार होंगे और युवाओं की नई सोच होगी। दोस्तों हम चाहते हैं कि आज के युवा सिर्फ रेडियो सुनने का नहीं, बल्कि रेडियो का हिस्सा बने। यदि आप में कविता, कहानियाँ लिखने का हुनर है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। यदि आप गायन या वादन पर माहिर हैं तो आकाशवाणी आपकी कला को सही दिशा जरूर देगी। और यदि आप समाज की किसी भी समस्या पर बोलना चाहते हैं तो युवाणी कार्यक्रम को आपका इंतज़ार रहेगा। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हैं, वहां आपकी एक छोटी सी पहल आपको एक ग्लोबल वॉइस बना सकती है। तो आपको अपनी झिझक को पीछे छोड़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम सिर्फ आकाशवाणी का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम है आपका कार्यक्रम। दोस्तों आज के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और अब वक्त है उन स्तंभों को याद करने का जिनकी छत्र छाया में आज हम यह उत्सव मना रहे हैं। आकाशवाणी भागलपुर के इस ऐतिहासिक मंच पर मैं सबसे पहले उन चेहरों का परिचय कराना चाहती हूँ जो रेडियो यानी आकाशवाणी की दुनिया के असली शिल्पकार हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं आकाशवाणी भागलपुर से युवाणी अनुभाग से सौरभ सर, जो युवाणी के जरिए युवाओं की आवाज़ को तराशते हैं, और उर्दू कार्यक्रम अधिशासी शशार अहमद सर, शब्दों के जादूगर, जो उर्दू अनुभाग की कमान को संभालते हैं। इसके साथ ही हमारी टेक्निकल टीम से वरीय तकनीकीय संजीव कुमार एवं टेक्नीशियन अजय कुमार सरकार, जिनके बिना मेरी आवाज़ आप तक पहुंचना नामुमकिन था दोस्तों, उन सभी का दिल से स्वागत है।
6: अब मैं रुक करना चाहूंगी इस संस्थान की उस शख्सियत की ओर जिनके बिना आज का ये प्रोग्राम मात्र एक विचार ही रह जाता। मैं बात कर रही हूँ हमारे माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर दीपो महतो। आपका यहाँ होना हमारे लिए प्रेरणा है सर। साथ ही निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद होंगे डॉक्टर पुष्प कुमार रॉय, जो कि गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हमारे साथ उर्दू विभाग के HOD भी यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद शमीउद्दीन खलीक। साथ ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमन सर, हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अमलेंदु कुमार अंजन। दोस्तों, अब आपकी बारी है कार्यक्रम में प्रतिभागी बन इसे आगे बढ़ाने की। आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आपकी प्रतिभा से मनाएंगे। आज का हमारा कार्यक्रम है एक्सट्रीम स्पीच कंपटीशन। इसके लिए हमने 4 विषय चुने हैं, जिसमें से पहला विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा विषय है सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव, तीसरा विषय है वर्तमान समय में युवाओं में उर्दू की स्थिति, एवं चौथा और आखिरी विषय रेडियो का समाज के विकास में योगदान। दोस्तों, आपको इन 4 विषयों में से किसी एक विषय पर अपना भाषण देना है, यानी अपने विचार हमारे समक्ष रखने हैं। जो प्रतिभागी अपने मौलिक विचारों से प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उसे आकाशवाणी भागलपुर से हमारे साथ युवाणी कार्यक्रम होस्ट करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसके साथ ही विजेताओं को आकाशवाणी की तरफ से प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो आपकी पहचान बनेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आपकी आवाज़ को आकाशवाणी की पहचान बनाने के लिए? मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इतिहास के पन्नों को पलटा, लेकिन अब वक्त है वर्तमान की शक्ति को देखने का। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच मौजूद सीनियर्स आज के विनर्स का फैसला करेंगे। हमारे निर्णायक मंडल के मेंबर्स बारीकी से आपकी प्रस्तुति, आपके शब्द और आपके आत्मविश्वास का अवलोकन करेंगे और अंत में विनर का नाम घोषित करेंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ मौजूद बैठे आप सभी युवाओं को दिल से बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ मिनटों में अपनी सोच को आपने समेटा होगा और इसी कॉम्पिटिशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया होगा। याद रखिएगा दोस्तों, हार या जीत कहीं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका इस मंच पर खड़े होकर अपने विचारों को सबके समक्ष रखना। अब इंतज़ार की घड़ियाँ यहीं ख़त्म होती है। आप युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाने के लिए ये मंच आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सबसे पहले प्रतिभागी का, जिनका नाम है हबीबा।
7: सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ने दुनिया को एक गांव की शक्ल दे दी है। आज लोग हज़ारों मील दूर बैठकर भी एक दूसरे से चंद सेकेंड में रब्ता कर सकते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। अगर हम इसके मुस्बत पहलू को देखें तो सोशल मीडिया इल्म हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तालमी वीडियोस देखते हैं और अपनी मालूमात को दुनिया के सामने जाहिर करते हैं।
6: दोस्तों, हमारे अगले प्रतिभागी हैं मोहम्मद सईद अनवर।
8: और हमारे नौजवान में उर्दू की क्या अहमियत है उन पर बात करने का हमें मौका मिला है। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि ये एक खूबसूरत ज़बान है। इसकी खूबसूरती और इसकी लाजवाब और इसकी अल्फाज काफ़ी खूबसूरत हैं। ये सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि दुनिया की कई ज़बानों में से एक है। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और हिंदुस्तान के कई ऐसे शायरों ने उर्दू ज़बान को वो बुलंदियाँ अता की है जो दुनिया के किसी भी शायर नहीं कर सकते और किसी भी ज़बान की ज़बान नहीं कर सकती है। तो हमारे नौजवान उर्दू को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और उर्दू को ना कोई समझ पाते हैं जल्दी, ना कोई लिख पाते हैं, ना फिर पढ़ पाते हैं। कुछ नौजवान तो उर्दू को लिख भी पाते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें चाहिए और हमारे नौजवान को चाहिए कि वो उर्दू लिखे, उर्दू को पढ़े और सही ढंग से पढ़े, ताकि उर्दू और थोड़ा ऊँचाई और बुलंदी पर जाए।
6: दोस्तों हमारी अगली साथी हैं बी खुशनुमा।
9: आज मैं आप सबके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक ज़ुबान का मौजू नहीं है बल्कि हमारी तारीख, हमारी तहजीब, हमारी शनाख्त और हमारे जज्बात का मौजू है। मेरा मौजू है मौजूदा दौर में नौजवानों में उर्दू की हालत। जी हाँ, उर्दू वो ज़ुबान है जिसके लहजे में मोहब्बत बोलती है, जिसके लफ्ज़ों में तहजीब मुस्कुराती है और जिसकी आवाज़ में दिलों को जोड़ने की ताकत होती है। ये वो ज़ुबान है जिसने कभी महलों से लेकर गलियों तक, किताबों से लेकर शायरों तक और दिलों से लेकर महफिलों तक राज किया था। उर्दू ने हमेशा ही दिलों को जोड़ने, मोहब्बत बांटने और इंसानियत का पैगाम देने का काम किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के जदीद और तेज़ रफ्तार दौर ने नौजवान नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता उर्दू से दूर कर दिया है। आज के नौजवान उर्दू बोलने को झिझक महसूस करते हैं और अंग्रेजी बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। आखिर क्यों आज का नौजवान अपनी ज़ुबान बोलने में झिझकता है? क्यों उर्दू किताबों पर गर्द जम रही है और क्यों मोबाइल की चमकती स्क्रीनों ने मुताले की रोशनी छीन ली है? शायद ये नहीं जानते कि ज़ुबानें सिर्फ बोली नहीं जाती, ज़ुबानें कौमों की रूह हुआ करती हैं। और उर्दू सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है, ये मोहब्बत का अंदाज है, ये जज्बात की तर्जमान है, ये अदब का वक़ार है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।
6: साथियों, आज का हमारा यह यूथ आउटरीच प्रोग्राम अपनी सफलता के शिखर पर है और जब बात इतने बड़े स्तर की हो तो उस शख्सियत का मार्गदर्शन मिलना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है जिनके कंधों पर इस पूरे ऐतिहासिक संस्थान के गौरव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब मैं पूरे दिल से असीम श्रद्धा और गहरे आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगी TNB कॉलेज के माननीय एवं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर दीपो महतो सर को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
10: TNB कॉलेज में आज आकाशवाणी भागलपुर के द्वारा जिन प्रकार के विभिन्न प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हम आकाशवाणी भागलपुर से आए हुए महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ TNB कॉलेज के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हों और हमारे प्यारे बच्चे जो प्रतियोगिता में भाग लिए हों, हम सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये आप इस कॉलेज की गरिमा को बढ़ाने के लिए TNB कॉलेज के द्वारा जो खोई हुई गरिमा थी उसको प्राप्त करने की दिशा में आज हम इस जगह किसी न किसी प्रकार के नए कार्यक्रम को बार बार करते रहते हैं, इसके लिए भी हम सबके प्रति आभारी हैं। मैं तो किसी मेरा संबंध किसी लिटरेचर से नहीं है, मैं तो विशुद्ध रूप से विज्ञान का छात्र या शिक्षक हूँ, तो मैं तो अच्छी भाषा शैली में किसी बात को कह नहीं सकता, लेकिन जो हमारी टूटी फूटी भाषा है हम उसमें यह कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ना है तो हौसला बुलंद होनी चाहिए और आगे बढ़ने का जो हमेशा प्रयत्न करता रहता है उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है।
6: दोस्तों, जब तक हमारी प्रतिभागियों की सूची और परिणाम तैयार होकर मेरे पास आते हैं तब तक क्यों न हम उस अनुभव से जुड़े जिसने हजारों सपनों को हकीकत में बदला है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। हमारे जजेस ने आज के प्रोग्राम के परिणाम तैयार कर लिए हैं। आज हार या जीत मायने नहीं रखती, अगर कुछ मायने रखता है तो आपका उत्साह। अब मैं हमारे निर्णायक मंडल में से हमारे सर अख्तर सर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो विनर का नाम घोषित कर सके।
11: जैसा कि एक बच्ची कि यहाँ से प्रोग्राम करते ही अनाउंसर की तरफ से उनकी हौसला अफजाई, तो यकीनन पहली पोजीशन पे भी खुशनुमा है 68 मार्क्स के साथ पहले नंबर पे।
0: तो दोस्तों अभी अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित यूथ आउटरीच प्रोग्राम की विशेष प्रस्तुति। आशा है कि इस आयोजन में युवाओं के उत्साह, प्रतिभा और सहभागिता की झलक आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, इतिहास दर्पण। चार दून का इतिहास भारत और दुनिया के कई महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और त्रासदियों से जुड़ा है। इस दिन से जुड़ी मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। साल 1989 में बीजिंग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर चीनी सेना ने कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। साल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के सैनिकों को डनकर्क से सुरक्षित निकालने का अभियान पूरा हुआ। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान के बीच प्रशांत महासागर में ऐतिहासिक मिडवे युद्ध की शुरुआत हुई। आज के इतिहास दर्पण में बस इतना ही। अब बारी है हमारे अगले दैनिक स्तंभ समसामयिकी की। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष बैठक ओडिशा के पुरी शहर में शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक मंच पर लाने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। भारत में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज यानी 4 जून को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के समसामयिक ज्ञान से बस इतना ही। मित्रों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, जो कि हमारे स्तंभ डेली ट्रिविया से संबंधित था। विश्व का पहला रेडियो स्टेशन कब और कहां खुला था, जिसका सही जवाब है साल 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया। अब बारी आती है अगले दैनिक स्तंभ फन फैक्ट के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक रोचक जानकारी जानने की। क्या आपको पता है मित्रों, आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य देश भर में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का प्रसार करना है। आज आकाशवाणी 590 से अधिक स्टेशनों का संचालन करता है, जो कि भारत की 98% आबादी तक पहुंचते हैं। इसी के साथ हमारा दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया और फन फैक्ट यहीं समाप्त होता है। पेश है फिल्म संगीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में हीरो हिंदुस्तानी से।

दोस्तों, युवानी का यह विशेष अंक अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत चर्चाएं, जानकारी और विभिन्न प्रस्तुतियां आपको ज़रूर पसंद आई होंगी तथा आपके ज्ञान और विचारों को एक नई दिशा देने में सहायक रही होगी। अगर आज के कार्यक्रम का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय हमें पत्र, ईमेल या संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 812001। हमारा ईमेल एड्रेस है phaiarbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आपकी ऊर्जा और सकारात्मक सोच ही हमारे समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनने का प्रयास कीजिए। अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त मानसी को। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों, नए विषयों और नई चर्चाओं के साथ। शुभ संध्या एवं नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, उस कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए क्षितिज और शिल्पा राव की आवाज़ में फिल्म अनवर का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं हसन कमाल ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म स्ट्राइकर का ये गाना। इस गाने के बोल लिखे हैं जितेंद्र जोशी ने, संगीत है शैलेंद्र बर्वे का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ये गाना, और इस गाने के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए कार्यक्रम विवरण में जानते हैं हमारी आज की सभा के शेष और हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही पलों बाद यानी कि शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज शाम 7:10 से आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार पवन कुमार राम से लोकगीत। आज शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे सुनील कुमार मिश्र। आज रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज रात 10 बजे से आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारी कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर, जिसमें 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन कार्यक्रम। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में तनाव और योग विषय पर सुरेश कुमार से वार्ता। कल प्रातः 6:40 पर रामचरितमानस गान पाठ में आप सुनेंगे गायक रविंद्र साठे को। कल प्रातः 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसमें आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और कल का इतिहास। साथ ही रसरंग कार्यक्रम में डीजी प्रदर्शनी से आप सुनेंगे सुगम संगीत। कार्यक्रम में 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी कथा में गांधी और जेल सुधार पर वार्ता, वार्ताकार होंगे डॉक्टर मुकेश कुमार। कार्यक्रम में आगे 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कल प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। कल दिन के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे लक्ष्मी पांडे। कल दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से और 11:30 से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम गुलदस्ता। कल दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। कल दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, क्षमा कीजिएगा, कल दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, जहां कलाकार होंगे जय नारायण शर्मा। कल दोपहर 1:30 से आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। कल दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत चित्रपट से। श्रोताओं, कल शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कल शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्त से वार्ता। कल शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, जहाँ कलाकार होंगे उदय नारायण राय। कल रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्दशिल्प। शब्दशिल्प कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण, जहां वार्ताकार होंगे डॉक्टर इति कुमारी। उसके बाद आप कार्यक्रम में सुनेंगे कहानी गर्मी जून में नहीं जुनून में है, जिसके कहानीकार होंगे धीरेंद्र छथरवाला। और उसके बाद कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे काव्य पाठ अभय कुमार पाठक से, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रदर्शन। कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान से आप सुनेंगे सहनाई वादन राग मालकौंस में। और कल रात 10:30 से आप सुनेंगे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेलों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, जो गांव की मिट्टी, खुशबू और किसानों की मेहनत, लोक संस्कृति की रंगत और ग्रामीण विकास की नई कहानियों से रूबरू कराता है। सभी को पूरो का नमस्कार।
1: सबका मनो को भी नमस्कार, अपनों को भी नमस्कार हो पूरो भाई।
0: नमस्कार नमस्कार मनो भाई, क्या हाल समाचार है?
1: सब चकाचक छो पूरो भाई। देखो कि मौसम ने करवट ले
0: ला। अरे बा, मौसम का तो कहिए, मतलब ये तपती धूप और एकदम जालिम मौसम कहे तो कुछ का ठीक नहीं होगा, मतलब कुछ ठीक रहने ही नहीं दे रहा है ऐसा मौसम है।
1: पिछलका दो दिनों जैसे बड़ा उमस एकदम मन अकबक कर दिया,
0: एकदम एकदम मनो भाई
1: मन अशांत
0: बिल्कुल,
1: और गर्मी से उमस ज्यादा खतरनाक हो।
0: दिन में तो मतलब थोड़ा भी जैसे बाहर निकले ना तो ऐसा लगता है कि शरीर का एकदम चमड़ा जल जाए ऐसा, मतलब धूप एकदम आ रहा है। तब बिना बाहर निकले तो हमारा खेती बाड़ी वाला काम भी नहीं हो सकता है, तो किसान भाई को तो एकदम बाहर निकलना ही पड़ेगा। मनु भाई, इस तेज धूप से और मौसम से बचने के लिए अपने आप को ना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा,
1: जागरूक
0: और ध्यान रखना होगा कि कैसे हम इस मौसम में अपने आप को बचा कर रखें। तब इसके लिए तो हमें पर्याप्त पानी पीना पड़ेगा, मतलब दिन भर में प्यास जी लगे या नहीं लगे,
1: हाँ,
0: आपको पानी पीते रहना होगा एकदम एकदम। और उसके बाद ORS या फिर नींबू पानी,
1: हाँ ORS नहीं मिलना तो घरों में ORS तैयार करो ना,
0: नींबू पानी नमक देके एकदम बढ़िया,
1: चीनी और नमक मिला के पियो, ORS हो ले
0: एकदम, छाछ पीजिए,
1: हाँ,
0: नारियल पानी पीजिए, ताड़कून अभी जो मिल रहा है, ताड़ का जो एकदम फल सुंदर अभी तो हर जगह एकदम मिल रहा है,
1: या भाफी खा
0: एकदम, उसको एकदम उसका पानी पी सकते हैं। और शरीर में जो लवण है ना ये उसकी मात्रा को पूरा करता है।
1: अरे देखो पूरा भाई, जो की पानी मात्रा बने रखे चाहे छो, खीरा खा
0: एकदम एकदम,
1: अपनी बाजारों में तरबूज आ गए, खरबूज आ गए, हौसनी खाना चाहे सस्ता फल छे, लेकिन खनिज विटामिन से एकदम भरलो छे, पानी की मात्रा ओकरा में ज्यादे रहे छे, एकदम मन मिजाज जे छौ स्वास्थ्य एकदम तर रहथौ पानी से,
0: बिल्कुल,
1: और बीमार पड़े के संभावना कम रहते
0: जी। मनु भाई, धूप से बचने के लिए ना बाहर निकलते समय हमको तो अभी कम से कम गमछा एगो ले लीजिए, बढ़िया
1: सही कहलो,
0: एकदम सूती का छाता ले लीजिए, टोपी कम से कम, अगर बच्चे स्कूल जा रहे भी तो गर्मी छुट्टी भी हो गया है लेकिन जैसे बाहर ही जा रहे हैं तो उस समय कम से कम गमछा टोपी छाता ये सब लेकर चलना चाहिए, एकदम हल्का का रंग का सूती कपड़ा, पहनना चाहिए जिससे शरीर को भी ठंडा।
1: जी है मौसम में जैसे पुराना सूती कपड़ा पहनवा ना एकदम हो एकदम बड़ी ठंडा रखता
0: एकदम एकदम। और मनु भाई, 12 बजे से जो 4 बजे का समय है इसमें तो मतलब खास करके बच्चों को धूप से एकदम बचाइए, बड़ों को एकदम निकलने ही मत दीजिए, लू चल रहा है ना, हवा चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, और मतलब मौसमी तो आपने जैसा बताया कि एकदम फल फ्रूट खूब बच्चा लोग को खिलाइए, सब बड़ा अपने भी खाइए,
1: बच्चा जैसे हो जो कोल्ड
0: सबसे बड़ा बात मनु भाई, जो फ्रिज का पानी है सबसे घातक ये भी है, जैसे अभी देखिएगा कि मौसम बदले और हम कहीं से दौड़कर या धूप से आए और तुरंत फ्रिज का पानी पी लिए तो उससे भी एकदम बिल्कुल
1: बिल्कुल, देखो घरों में घड़ा रखो,
0: घड़ा का पानी
1: पियो, घड़ा का पानी,
0: सुराही का पानी पीजिए,
1: मौसम के साथ एकदम स्वास्थ्य बनलो रहता हूँ। और देखो पूरा भाई है, गर्मी उर्मी से जैसे ना कभी कभी गुस्सा भी बड़ी जोर रहता
0: हूँ,
1: एकदम आक्रामक खोजता हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि खल खलिहानी में खेत बहार में लोग लड़ी भी जाए
0: एकदम,
1: गर्मी से मन तर बतर एकदम पूरा आक्रामक रहे छे। और देखो गुस्सा और आक्रामकता जो है ना कोई भी समस्या के हल है जमाना में नहीं है
0: एकदम,
1: जितना शांत रह उतना अच्छा से सुकून से काम निकलता हूँ
0: बिल्कुल,
1: लेकिन की कर लो जाए, गुस्सा भी आवे छे, आक्रामकता आवे छे, आरो देखो बहुत कारण रहे छे हमको सारो आक्रामकता के छे कि नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल। मनु भाई, अभी जैसे गर्मी जो आप बात कर रहे हैं, मन भी हमारा अशांत रह रहा है ना, तो ये सब ना शायद लू का भी कारण हो सकता है। देखिए अभी जैसे मौसम में लू चल रहा है तो अगर चक्कर आ रहा है
1: जी जी,
0: या फिर तेज सिरदर्द हो रहा है, या फिर अधिक प्यास आपको लग रही है, बात बात में प्यास लग रहा है, या फिर कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़ा थोड़ा बेहोशी जैसा लग रहा है, या फिर शरीर आपका बहुत गर्म हो रहा है, तो ये सब लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हमें एकदम की लग रहा है कि लू मारने वाला है,
1: तो
0: एकदम एकदम, और ठंडी जगह में हमको आ जाना चाहिए, और ORS इत्यादि का हमें सेवन करना चाहिए, और ज्यादा अगर कि हाँ एक दो घंटा में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना,
1: डॉक्टर से जरूर मिलो, कहना कि है लू भी जे छे और कप का पाता ठंडा जो कम नहीं छे, जेना ठंडा साथ में मरी जाए लू से भी आदमी मरे ये वास्ते घरेलू उपाय के साथ साथ नहीं हुआ जब नहीं समरह तब डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए किसान भाई बहन एकदम है ध्यान में रखना चाहिए।
0: बिल्कुल मनो भाई आजकल के जो भी देखिए ना बच्चे ना बहुत मतलब नादान हो गए हैं, कोई भी गलती हो ये कर लेते हैं या फिर चुपचाप रहते हैं, मतलब कुछ भी गलती काम भी कर लिए तो किसी से बताएंगे नहीं, एकदम मन में छुपा के रखेंगे।
1: खास करी के पूर्व भाई जो कहो हाथ कटी गलो जो कुत्ता बिल्ली काटी लख मम्मी डरा या पापा डरा शांत चुपचाप
0: एकदम एकदम मन ही मन मतलब उसको सोचते रहेंगे बाहर किसी से शेयर नहीं करेंगे बातचीत नहीं करेंगे और मतलब अपने तो परेशान रहेंगे ही दूसरे को परेशान नहीं करेंगे चुपचाप बस अपने मन के अंदर।
1: लेकिन चुप्पी जैसे बड़ा समस्या बनी बात
0: बिल्कुल और समस्या तो बनेगा ही मनु भाई, लेकिन ये जो बच्चा लोग जैसे कि आप अत्यधिक पीड़न वाला कभी केस आ जाता है शोषण का केस आ जाता है कि बाल मजदूरी कराया जा रहा है या फिर घरेलू हिंसा भी कई बार बच्चे शिकार बन जाते हैं तो इन सब चीजों के
1: बच्चा बड़ा दुष्प्रभाव पड़े छे
0: जी।
1: अब बच्चा जो अंदर अंदर घुटे छे और वो आक्रामक हो जाए गुस्सेल हो जाए
0: बिल्कुल
1: उनका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता और वो पूरा जीवन पर्यंत गुस्सेल ही रहे छे जकरो कारण ओकरो परिवार समाज बड़ा अशांत हो जाए छे
0: जी।
1: आपने पूर्व भाई गुस्सा के बात कहना करी रहलो छो एखना मन
0: काहे की मन्नु भाई आज का जो दिन है ना
1: अच्छा अच्छा
0: ये खास करके बच्चों के लिए है
1: अच्छा
0: क्योंकि आज आक्रामकता के शिकार जो बच्चे हो गए हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
1: अच्छा पूरा दुनिया में दिवस मना
0: लेते हैं। हाँ बिल्कुल प्रत्येक वर्ष से 4 जून को ही मनाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: यह दिवस उन बच्चों को पीड़ा और संघर्ष को याद कराने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध आतंकवाद हिंसा शोषण और घरेलू उत्पीड़न जैसे अन्य प्रकार के आक्रामकता से वो शिकार बनते हैं जी। इसका उद्देश्य लोगों को बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है जी।
1: और देखो कि है जे खास करी का बच्चा जे शिकार हो छे खास करी की युद्ध वाला जे एरिया छे जिन्हें देखो इजराइल फिलिस्तीन में हो रहलो छे
0: बिल्कुल
1: तो है इस एरिया में जो बच्चा रहे छे वहाँ बच्चा के हत्या अंग भंग अपहरण यौन हिंसा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के सुविधा तक भी हमला हो
0: जी जी।
1: और अत्यंत अमानवीय मना क्रूर हमला भी बच्चा पर हो
0: और उसका असर बहुत देर तक रह जाता है बच्चों पे। अभी मान लीजिए अभी चल रहा है हमला हमला हुआ किसी तरह का उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
1: अब देखो जना की युद्ध जहाँ युद्ध हो रहा है खास करी के पूर्व है वहाँ को जैसे बम बरसी रहा है गोला बरसी रहा है ओकरा में बच्चा ज्यादा परेशान हो कहना कि युवा और बड़ो जैसे में तो झेली ले लेकिन बच्चा के स्कूल जाना चाहिए बच्चा के बाहर खेलना चाहिए बच्चा बाल मन छोटो मन ओकरो कोमल मन रहे छे एकरा बुरा प्रभाव पड़े छे और है वास्ते जे छे पूरा दुनिया में है विचार करलो गेले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि एक एहनो दिवस मनेलो जाए जकरा में कि है रंग जे बच्चा जे शिकार बच्चा होय छे युद्ध से या और कारण से
0: आतंकवाद से हिंसा से शोषण से
1: सहानुभूति प्रकट कर लो जाए और उनका वास्ते जो कानूनी सहायता छे जागरूक कर लो जाए।
0: बिल्कुल मनु भाई 1982 के समय मध्य पूर्व के क्षेत्र में हुए संघर्षों के दौरान
1: जी जी।
0: बड़ी संख्या में बच्चों को हिंसा और युद्ध का शिकार होना पड़ा था। इन घटनाओं से संचित होकर संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 19 अगस्त 1982 को एक प्रस्ताव पारित किया
1: अच्छा,
0: और 4 जून को आक्रामकता को शिकार महसूस बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया।
1: तो ये से दिवस मने लो जाए लो छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत में मन्नू भाई ये दिवस ना केवल युद्ध प्रभावी बच्चों के लिए था
1: अच्छा
0: लेकिन समय के साथ इसमें व्यवहार किया गया इसे बदला गया और आज ये उन सभी बच्चों के लिए समर्पित है जो किसी भी प्रकार की हिंसा शोषण आक्रामकता का सामना करते हैं जी जी। दुनिया भर में जो लाखों बच्चे हैं जो युद्ध आतंकवाद या फिर बाल श्रम या फिर मानव तस्करी शारीरिक हिंसा जो होती है
1: जी जी।
0: या फिर मानसिक उत्पीड़न जैसी जो समस्या होती है उसका सामना करते हैं और इन परिस्थितियों का उनके स्वास्थ्य पर शिक्षा पर और भविष्य पर एकदम बिल्कुल गंभीर प्रभाव पड़ता है।
1: बच्चा ना पूर्व भाई बच्चा जो मनोविज्ञान हो बच्चा जो मन हो बड़ा ही कोमल और हैरंग शिकार से हैरंग शोषण से बच्चा काफी डैमेज हो जाए क्षतिग्रस्त हो जाए उनको मन और उन्हें एक खराब इंसान बने बाद में आतंकवादी बनी गलो चोर डकैत डाकू लुटेरा बनी गलो तो की हो पूरा समाज प्रभावित होलो तो हमरा सनी का बच्चा का हैरंग हिंसा से बचाए के रखना छे
0: बिल्कुल
1: और ओकरा वास्ते सरकार ने बहुत उपाय भी करले छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कि बच्चा को कोई भी तरह के शोषण नहीं हो शारीरिक मानसिक यौन कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल मनु भाई आज के दिन का जो उद्देश्य है ना यही है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाली जो हिंसा है उसको कैसे रोका जाए
1: कैसे रोक लो
0: जी बात या फिर अधिकार के

0: प्रति उनका जागरूकता कैसे फैलाया जाए कि बच्चों को उनके अधिकार मालूम हो कि हमें बाल श्रमिक नहीं बनाया जा सकता है, हमारी जो बाल विवाह हो जाता है वो नहीं होना चाहिए।
1: बच्चा होना भी मालूम होना चाहिए, जो पढ़ लो लिख लो अगुवा छे समाज क्षेत्र के गांव के, उनका भी जानकारी होना चाहिए छोटा बच्चा का, उनको जीवन बचाना चाहिए संघर्ष से, शोषण से बचाना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके।
0: बिल्कुल, युद्ध और संघर्ष से प्रभावित जो बच्चे हैं उनकी तो सहायता करनी चाहिए
1: जी जी।
0: और बच्चों को सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, विश्व में शांति और मानवता को मुख्य हमें बढ़ावा देना चाहिए। मनवे आज का जो दिन है ना, ये बहुत सारे आप देखेंगे कि कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में मनाया जाता है,
1: सामाजिक संगठन
0: चित्रकला पेंटिंग हो गया कि कैसे हम चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखा रहे हैं कि वो कैसे सामना करते हैं, और जब उस तरह का कोई भी हमें केस मिलता है, हमें सुनने को मिलता है, तो हमें ना उनको मतलब ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि वो समाज से अलग हो
1: अलग छे। बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: उन्हें समाज रो लोगों को ख्याल नहीं चाहिए,
0: ख्याल नहीं है जी जी।
1: हमें हमारा समाज में जैसे बहुत विचार रखे छे बच्चा बचाए वास्ते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है तो हो गेलो पूर्व भाई
0: एकदम मनो भाई।
1: तब आक्रमकता के शिकार मासूम बच्चों के जे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनेलो जाय छे, हमरा फरसने चर्चा कर लिए। अपने की विचार छो?
0: अब तो मनु भाई शाम का भी समय हो गया है, तो एक दो बढ़िया एकदम भोला बाबा शिव भजन एक सुन लेते हैं। कलाकार हैं वासुकी प्रसाद यादव जी,
1: आप सुनने शिव भजन।

0: हाँ पूर्व भाई, भोला हो तो सुतले रहो दुख हरब तो कहिया
1: जी।
0: इतना अच्छा शिव भजन चले,
1: मतलब बहुत बढ़िया शिव भजन। शाम में जो होता है ना मनु भाई कि हम बैठे रहें और भगवान शिव की आराधना करें
0: जी,
1: और लग रहा है कि मतलब भजन के माध्यम से, मतलब शब्द जहाँ कम पड़ जाए ना तो फिर भजन हमारे।
0: अरे देखो कि भक्त रहो भक्ति देखो, उन्हीं कहे कि सुतले छो अपने, लेकिन भगवान शिव कखनी सुतलो
1: नहीं,
0: जगलो रहे सब भक्तों को देखता रहे। अवस्था दुख दूर करवे करते होवे करते है कि नहीं
1: जी जी।
0: और देखो क्या भाई सी भजन होले करो बाद जे छवरास ने कुछ
1: जी बिल्कुल
0: आवश्यक संदेश सुने
1: संदेश सुन लेते हैं फिर उसके बाद
0: आगू बढ़ो है।

0: Akashvani at 90.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: AIR at 90.
1: हाँ पूर्व भाई
2: संदेश के बाद एक बार फिर से अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।
1: और देखो अपने जो बतेलो अखने कि मने बच्चा जे हिंसा के शिकार हो जाए छे ठीक है ना, ओकरा वास्ते जे समाज काफी जागरूक छे
2: बिल्कुल, और कई तरह के अभी नियम भी चल रहे हैं कि बच्चों के प्रति हमें कैसे अपना व्यवहार सकारात्मक रूप से दिखाना चाहिए।
1: और देखो अपनो घर जे होय छे ओकरा में महिला के बड़ा योगदान होय छे ठीक है ना, लेकिन देखो कि महिला घर के लक्ष्मी होय छे लेकिन फिर भी महिला साथ में कुछ हिंसा होय छे
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाहे दहेज से संबंधित हुआ या आरो कोई कारण हुआ
2: जी, घरेलू समस्याएं भी बहुत तरह की होती है मनु भाई।

0: अभी ज्यादातर जैसे कि आप, हम तो गांव में पहले सोचते थे मनु भाई कि
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: गांव में ही इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन
1: हाँ।
0: अगर आप शहरी क्षेत्रों में भी
1: शहर में
0: देखेंगे
1: ज्यादा
0: जी या फिर बड़े महानगर में भी देखेंगे तो ऐसी समस्याएं आए दिन हमें न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलती है।
1: लेकिन है जे हिंसा होइ छे एकरा वास्ते सरकार ने काफी नियम भी बनेला छे ताकि घर के जे लक्ष्मी होइ छे एक मजबूत चक्का होइ छे घर के चलाय वास्ते
0: बिल्कुल
1: ओकरो हुनका वास्ते को हिंसा जो होइ छे तो ओकरो रोकथाम वास्ते कुछ नियम भी छे
0: एकदम
1: अपने
0: एकदम।
1: की कहल जाय छ
0: एकरा
1: पर कुछ
0: आ एगो पूर्व प्रसारित वार्ता हम लोग अपने श्रोताओं को सुनाए जी जी जी घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम
1: अच्छा
0: और वार्ताकार होंगे श्रीमती अनामिका जी।
1: अब सुनने छी हटा वार्ता
2: तहत घरेलू हिंसा क्या है। घर के लोगों के द्वारा घर के व्यक्ति के अधिकार का हनन घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक हिंसा जैसे कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना इत्यादि शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। यौनिक हिंसा बलात्कार, अश्लील साहित्य या अन्य सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, दूसरों के मनोरंजन के लिए पीड़िता का उपयोग करना या अन्य यौनिक दुर्व्यवहार करना यौनिक हिंसा है। मौखिक हिंसा कलंक लगाना, बुराई करना, मजाक उड़ाना, दहेज आदि के लिए अपमानित करना, बच्चा या बेटा न होने पर ताना देना, शिक्षा या नौकरी के लिए अवरोध डालना, बाहर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना आदि मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। आर्थिक हिंसा खाना, कपड़ा, दवाई आदि का खर्च न देना या उपयोग न करने देना, घर का किराया न देना, घर में न रहने देना, घर के किसी भाग में न जाने देना, नौकरी न करने देना, वेतन या मजदूरी छीन लेना, बिना पूछे स्त्री धन या अन्य कीमती वस्तु बेच देना, बिलों का भुगतान न करना या इस तरह की अन्य बातें आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। इन हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण के हेतु 2005 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहतें मिलने का अधिकार दिया गया है जिसके अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार धारा 18 के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा से यदि कोई महिला पीड़ित हो या घटना घटने की आशंका भी हो तो वह सुरक्षा के अधिकार के तहत कानून से सुरक्षात्मक आदेश प्राप्त कर सकती है। अर्थात यह अधिकार केवल मानसिक, आर्थिक, शारीरिक आघात के बाद ही नहीं मिलता है बल्कि अगर इससे संबंधित घटना होने की संभावना भी हो तो इसकी पूर्व सूचना भी दी जा सकती है और सुरक्षा प्राप्त करने का उसको पूरा अधिकार है। इस आदेश को हिंसा रोको आदेश भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निवास का अधिकार धारा 19 के अंतर्गत का प्रावधान किया गया है। पीड़ित महिला को अपने निवास पर रहने का अधिकार है, उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता है। यदि पीड़िता किराए के मकान में रहती है तो आरोपी को किराया देने या उसी स्तर का आवास देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक अधिकार घरेलू हिंसा कारण महिला काम पर ना जा पाए जिसके कारण उसके आय में यदि क्षति होती है, मारपीट के समय सामानों का नुकसान होता है या डॉक्टरी इलाज में जो भी खर्च आता है, इसी स्थिति में महिला प्रतिपक्षी से आर्थिक अधिकार के अंतर्गत अपना हक ले सकती है। धारा 21 के अंतर्गत अभिरक्षा का अधिकार दिया गया है जिसके अंतर्गत अस्थायी रूप से बच्चे को अपने पास रखने या बच्चे से मिलने का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। धारा 22 के अंतर्गत मुआवजा का अधिकार दिया गया है। घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कष्ट, आघात आदि की भरपाई के लिए पीड़िता मुआवजा प्राप्त कर सकती है। यदि उस दौरान सामान की क्षति हो तो इसके लिए भी आर्थिक भरपाई प्राप्त करने का अधिकार इस धारा के अंतर्गत किया गया है। घरेलू हिंसा कानून 2005 का लक्ष्य है घरेलू हिंसा का तत्काल रोक लगाना, पीड़िता को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना, पीड़िता के लिए हिंसा मुक्त वातावरण प्रदान करना। घरेलू हिंसा कानून की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मुख्य रूप से घरेलू हिंसा पर तत्काल रोक लगाने के लिए अब तक अनेक कानून प्रभावी नहीं थे। एवं घरेलू हिंसा की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। यह एक ऐसा कानून है जो महिलाओं को ससुराल या मायके जहां भी वह रहती हो में रहने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के द्वारा पीड़िता को तत्कालीन एवं आपातकालीन सहयोग प्राप्त होगा। हिंसात्मक स्थितियों में घरेलू हिंसा से उबरने के लिए तुरंत रोकथाम करता है एवं राहत प्रदान करता है। इस कानून में शारीरिक प्रताड़ना के अतिरिक्त मानसिक प्रताड़ना को भी हिंसा की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह कानून दोनों पक्ष को परामर्श के आधार पर समझौता के लिए भी बल देता है। इस कानून की प्रक्रिया सरल है एवं दूसरे कानून की अपेक्षा कम समय अधिकतम 60 दिन के अंतर्गत अंतिम निर्णय प्रदान किया जाता है और कम खर्चीला भी होता है। इस कानून में पीड़िता को पुलिस पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती। यह कानून महिलाओं को भयमुक्त रहने का अधिकार देता है, उल्लंघन करने पर कानूनी उपचार प्रदान करता है। यह कानून पारिवारिक रिश्तों के बीच आपत्तिजनक व्यवहारों को सुधारने एवं हिंसा मुक्त घरेलू जीवन का अधिकार देता है। इस कानून के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इस कानून के अंतर्गत पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में एक घर में रहने वाले एक साथ जीवन व्यतीत करने वाले सभी लोग, हर उम्र की विवाहित अविवाहित महिलाएं व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अन्य सहयोगी के रूप में संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेवा प्रदाता, पुलिस थाना, कल्याण विशेषज्ञ, परामर्श विशेषज्ञ, चिकित्सा सुविधा केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी आते हैं। घरेलू नातेदारी रिश्तेदारी में पीड़िता कौन होती है? यह कानून घरेलू रिश्तों के साथ रहने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो एक साथ रहते हैं थे या एक साथ रहते हैं। यह रिश्ता निम्न रूप में हो सकता है। खून का रिश्ता, जैसे माँ बेटी, बहन, विवाहित अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, सभी इसमें शामिल हैं। विवाह का रिश्ता, पत्नी, बहू, भाभी, परिवार की विधवा महिला, गोद के रिश्ते, संयुक्त परिवार के रिश्ते, पीड़िता पीड़ित व्यक्ति कौन होंगे? घर की कोई भी महिला, माँ, भाभी, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, दूसरी पत्नी या अन्य महिला जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रहती है या रहती थी। आरोपी कौन होंगे? इसका कोई भी व्यक्ति पुरुष जो कि पिता हो, पुत्र हो, भाई, पति, जिसका इस तरह से कोई भी संबंध पीड़िता के साथ हो, उससे घरेलू नातेदारी में आएंगे। शिकायत करने का प्रावधान के अंतर्गत पीड़िता महिला या पीड़िता महिला की तरफ से अन्य रिश्तेदार, संबंधी, पड़ोसी, सेवा प्रदाता, डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति जो हो वो पीड़िता की तरफ से शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू हिंसा सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं वरन एक नातेदारी में रहती हुई किसी भी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर हिंसा घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं अर्थात मारपीट ही नहीं बल्कि मौखिक, यौनिक, आर्थिक किसी भी तरह से किया जाने वाला उत्पीड़न हो सकता है। साझा घर क्या है? वह घर जहां पर महिला परिवार के दूसरे सदस्य के साथ घरेलू संबंधों के साथ रहती है या रहती थी। संयुक्त परिवार का घर से उपयुक्त घर किराया का या अपना हो सकता है। क्या घरेलू हिंसा व्यक्तिगत स्तर की समस्या है? घरेलू हिंसा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा या महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है जिसमें समाज का हस्तक्षेप आवश्यक है। घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत कानूनी उपचार पाने का अधिकार पीड़िता को है। घटना की जानकारी देना, जिस जो कि मतलब जिम्मेवारी हो पीड़िता महिला या पीड़िता के पक्ष के अन्य कोई भी व्यक्ति, सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता या पुलिस को लिखित या फोन पर या अन्य माध्यमों से जानकारी दे सकते हैं। लिखित जानकारी के साथ पीड़िता का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। मामले को दर्ज कराना, पीड़िता की उपस्थिति में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस के द्वारा कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी के पास आवेदन देना एवं न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर सुरक्षा अधिकारी द्वारा केस दर्ज करना।

न्यायालय की प्रक्रिया। पीड़िता पक्ष प्रतिनिधि। पीओ के द्वारा तैयार आवेदन के साथ शिकायतकर्ता एवं पीओ दंडाधिकारी।

0: प्राप्त हो सकेगा। राहत आदेश सुनिश्चित करना के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा 3 दिनों के अंदर एवं मामले की सुनवाई एवं 60 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय आदेश जारी करना, पीड़िता के पक्ष में हिंसा एवं सुरक्षा के संबंध आदेश देना, पीड़िता के पक्ष में निवास आदेश जारी करना, आरोपी या उसके पक्ष के लोगों द्वारा पीड़िता को या उसके आश्रितों को साझा गृहस्थी से हटाने पर रोक लगाई जा सकती है। आर्थिक राहत आदेश के अंतर्गत पीड़िता व बच्चों को भरण पोषण एवं हिंसा के परिणामात्मक कष्टों की भरपाई हेतु मुआवजा का आदेश दिया जा सकता है।
1: हाँ, पूरा है, सुंदर वार्ता चले।
2: बिल्कुल, श्रीमती अनामिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि घरेलू हिंसाओं में जो महिलाओं के प्रति हम जो संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: देखो कि है भाई बहनी का जिसे श्रोता भाई बहन छह सुनी रहे कार्यक्रम का है जानना चाहिए। देखो कि घरेलू हिंसा के रोके वास्ते बहुत तरह के कानून भी छे, वास्ते महिला पर कोई भी तरह की हिंसा नहीं होना चाहिए, चाहे दहेज से संबंधित हुआ या और भी कोई तरह के कहना कि कानून छे भाई, कानून रो गिरफ्त में आब तो दिक्कत होता छे कि नहीं।
2: जी जी,
1: अरे देखो आब जे छे एकटा पूर्वी हो जाए,
2: मतलब कानून उनका बात हो गया, हिंसा का बात हो गया, अभी हम लोग सुबह से जी जी हिंसा का ही बात कर रहे हैं। तो बढ़िया, एकदम पूर्वी लोक संगीत का अपना धरोहर
1: नजरिया देखो कि बड़ा अच्छा पूर्वी छे। आब
2: बासुकी प्रसाद यादव जी
1: पूर्वी सुने छे।

0: हाँ
1: मनु भाई, अभी
0: जी
1: जो
0: जी
1: हम लोग का जो ये माध्यम है ना, हम अपने श्रोताओं से कैसे जुड़े हुए हैं,
0: जी जी
1: तो ये जो हमारा आकाशवाणी है, ये जो हमारा रेडियो है मनु भाई,
0: हाँ,
1: इसके नाम 90 वर्ष पूरे हो गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये 90 वर्ष एक बहुत लंबा समय रहा है कि कैसे हम अपने श्रोताओं से इतने समय से जुड़े हुए
0: हाँ,
1: हैं।
0: और 90 वर्ष तक हम अनवरत अलग अलग कार्यक्रम के तहत के जरिया जो है अलग अलग तरह के ज्ञान तकनीकी
1: शिक्षा
0: ज्ञान
1: बच्चों के लिए कार्यक्रम,
0: महिलाओं
1: के लिए
0: विशेष
1: कार्यक्रम, हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम,
0: शहरी आदमी के वास्ते, ग्रामीण आदमी के वास्ते, ग्रामीण परिवेश के वास्ते, हर एक तरह के कार्यक्रम जी
1: जी मनोज भाई, मतलब आपका तो हमको लगता है कि बहुत सारा याद रेडियो से जुड़ा हुआ, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप अपना ऐसा याद हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करिए कि वो रेडियो से क्या लगाव था आपका, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना आ गया है, टेलीविजन का जमाना आ गया, लेकिन जो रेडियो का समय था
0: जी जी।
1: वो कैसा स्वर्णिम था, उसके बारे में थोड़ा
0: देखो पूर्व भाई, आपने तो एकदम रेडियो के बात कही जैसे हमरो एकदम दिल एकदम झंकृत कर दिला। हो जवाना छले, हो समय छले, जब कि हमरा सनी बाल कुंज से शुरू कर लिए, बाल मंजूषा सुनने छलिए, ओकर बाद जब उम्र बढ़लै तो युवानी सुनने लगलिए, खेती गृहस्थी सुन लिए, आरो जितना भी कार्यक्रम हो छले आकाशवाणी भागलपुर के द्वारा सब हमरा सनी सुनल छिए, बड़ा ही ज्ञान वाला कार्यक्रम। देखो अपरो भाई, हमरा सनी जे भी अच्छाई छे, चाहे भाषा में अच्छाई हुआ, ज्ञान में अच्छाई हुआ, ओकरा में आकाशवाणी के बहुत योगदान छै हिंदी भाषा के समृद्ध करय में, आरो आसपास के संस्कृति शैक्षणिक माहौल के जानकारी दे वास्ते अपनो जे आकाशवाणी छै एकरो बहुत योगदान छै।
1: मतलब मनु भाई, मतलब पूरा धरोहर को जो संभाल के रखने का काम किया है हमारे बिहार की लोक परंपरा को।
0: देखो कि एकदम मना एक पीढ़ी का कई पीढ़ी खिनी संभाल छै आकाशवाणी ना, और 90 साल छोटो मोटो समय नहीं होले, कम समय नहीं होले, बहुत बड़ा अवधि छै हमरा सनी जे छै आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छिए। ठीक है
1: जी मनु भाई, तो अब आगे बढ़े और एक पूर्वी के साथ अपने श्रोताओं को जोड़ते हैं। बस की प्रसाद यादव जी,
0: एकदम

0: पूर्वी का
1: हाँ
0: भाव
1: भाई
0: एकदम मनोभाई की लगा कि हाँ
1: एकदम
0: एकदम
1: दिल जीती लखो एकदम छे कि
0: जी
1: ना
0: जी जी
1: गदगद हो गए सब श्रोता भाई बहन भी
0: मन तो
1: और
0: गदगद हो ही
1: देखो
0: गया
1: कि
0: मनोभाई, लेकिन अब कुछ मौसम का भी हाल
1: हाँ
0: जान लिया
1: मौसम
0: जाए।
1: के भी मिजाज जान लो जाए और कुछ कृषि सलाह भी किसान भाई
0: जी
1: बहन दिलो जाए तो अपने सुनाबो कुछ मनो
0: जी
1: भाई।
0: मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में
1: जी
0: 7 जून के दौरान
1: हाँ हाँ
0: दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान साफ रहने एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
1: अच्छा
0: हालांकि कल अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और भोजपुर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है
1: अच्छा
0: एवं इसके बाद आपके स्थिति में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा
1: जी
0: न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 65% तथा
1: जी जी
0: दोपहर में 20 से 25% रहने की
1: एक
0: संभावना
1: संभावना
0: है।
1: छे
0: अगले 2 दिनों में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है, जबकि इसके बाद पूर्वानुमान अवधि में 6 दिनों में दक्षिण पूर्व हवा चलने की अनुमान है। तो ये तो हो गया मौसम भाई सामान्य सलाह, लेकिन अपने श्रोताओं को थोड़ा समसामयिक सुझाव भी दे दीजिए कि
1: हाँ
0: किसान
1: हाँ
0: भाई कैसे हमारे
1: जी जी
0: खेती बाड़ी में भी मौसम का
1: देखो
0: ध्यान
1: पूर्व
0: रखें।
1: भाई अखनी जे धान के जे अब मन हो रो शुरुआत होते हैं ना
0: जी
1: लंबी अवधि वाला धान के किस्म जैसा सबोर छे सबोर श्री सवर्णा सब एक राजश्री राजेंद्र मसूरी राजेंद्र श्वेता स्वर्णा BPT 5204 आरो राजेंद्र कस्तूरी के नर्सरी जैसे स्थापित करलो जावा पड़े छे।
0: जी
1: स्वस्थ पौधा के वास्ते जैसे नर्सरी में सड़लो गोबर के खाद रो व्यवहार करना छे। नर्सरी के क्यारी में क्यारी की चौड़ाई जैसे 1.25 से 1.5 मीटर की लंबाई सुविधा अनुसार रखना छे। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के नर्सरी तैयार करना छे किसान भाई बहन। आ बीज के व्यवस्था जैसे प्रमाणित स्रोत से ही लेना छे वहाँ से उपलब्ध करना छे। आ बीज गिराए के पूर्व जे छे बीजोपचार जरूर करना छे। मक्का के खेती वास्ते खरीफ मक्का की बुआई करो आ खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़लो खाद जे छे प्रति हेक्टेयर के दर से जरूर व्यवहार करो। आ बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम स्फुर 50 किलोग्राम पोटास और व्यवहार जरूर करना छे। अनुशंसित मक्का के किस्म जनक छे स्वान देवकी शक्तिमान एक शक्तिमान दू राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 छे एकरो व्यवहार करना छे। पिछात मूंग के फसल में रस चूसक कीट माहू हरा फुदका सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स कीट के निगरानी करना छे। बचाव हेतु जे छे डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से फसल में छिड़काव करना छे जबकि आसमान साफ रहे। आरो सब्जी में जनक चखनी भिंडी में माइट एवं फल एवं तना छेदक तथा कद्दू वर्गीय पौधा में जे छे फल मक्खी के प्रकोप भी होइ छे एकरो नियमित निगरानी करना छे। माइट का जे प्रकोप होइ छे हौ दिखाई देला पर एथियोन 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी में छिड़काव करना छे। भिंडी के फसल में जे छे तना छेदक के प्रबंधन हेतु डायमिथियोट 30 EC प्रति 1.5 लीटर पानी में छिड़काव करना छे। आरो बागवानी में आम के बगान में जे छे आम रो बगान में कीट प्रकोप का नियमित निगरानी रख आर जो कि रेड बैंडेड कैटरपिलर रो प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत जे छे इमामोक्टिन बेंजोएट 2 मिलीग्राम लीटर पानी प्रति लीटर पानी में जे छे एकरा प्रयोग करना छे। लीची के तोड़ाई तोड़लो फल छे ओकरा परिपक्वता के आधार पर ही करना छे जँ पकी जाए फल तब तभी तोड़ना छे। आ शाही किस्म जे तोड़ाई निकट होने के कारण जे छे किसी भी प्रकार रो छिड़काव नहीं करना छे यानी कि जब ओकरा तोड़बो लीची के तो ओकरा पहिले कोई छिड़काव नहीं करना छे। आ चाइना किस्म के जे फल छेदक कीट के प्रबंधन हेतु लेमडा साई हेलोथ्रिन प्रति 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना छे जबकि मौसम साफ रह। आरो जे छे पशुपालन में जे छे पशुधन देखो सबसे बड़ा धन हमरा सनिक होइ छे। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के वास्ते जे छे पशु का टीकाकरण करना जरूरी छे। सभी तरह दुधारू पशु में जे छे टीकाकरण कर जरूर करवाब। आ नया गेहूँ के भूसा खिलाए के पूर्व जे छे हौ भूसा का 2 घंटा पानी में फुलाए जरूर ला और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना के साथ जरूर मिलाब ताकि जे छे पशु अपना एकदम मने निरोग रहो आरो अच्छा दूध दे आरो स्वस्थ भी रहे। तो है तो हो गए मौसम सूचना आरो कृषि आरो हमरा सनी जे छे अब एकटा पूर्व प्रसारित वार्ता सुने छे
0: पूर्व प्रसारित वार्ता से पहले मनु भाई
1: हाँ।
0: हम लोग एक जतसार सुन लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा जतसार
0: जी।

0: दत्त सर तो सुन लिए
1: जी, देखो कि अब जे छै हमरा सनी के कार्यक्रम के समय जे छै
0: जी अपने श्रोताओं से विदा लेना होगा जी,
1: श्रोता से विदा ले छै सबका, मनो के नमस्कार,
0: सभी को पूरो काफी नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा। 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस, झामुमो और राजद ने अपनी सांगठनिक बैठकें तेज कर दी हैं। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है।
5: हमारा हाईकमांड बात कर रहे हैं, RJD और लेफ्ट से बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक प्रायोरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, सो हम वेट कर रहे हैं।
4: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अभी काफी समय है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और सही समय पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे।
6: सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर, संभावनाओं पर, सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेट देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उसका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाए।
4: इधर रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य भर में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलावार दौरे की रणनीति तैयार की गई है।
7: पूरे राज्य का हम लोग का दौरा चल रहा है अगले महीना से। अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी का राय मशवरा हुआ, उन्होंने तीनों विधायक को भी डायरेक्शन दिया। लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, उसके विषय में डायरेक्शन दिया।
4: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जून के रांची दौरे के आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दौरे से राज्य में पार्टी के आगामी अभियानों और सांगठनिक विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
8: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 और 7 को रांची में आगमन हो रहा है और विशुद्ध रूप से वो झारखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं। इस क्षेत्र में लगातार उनका संपर्क, चुनाव के समय में भी इनका यहाँ पर आकर के चुनावी काम में सहयोग करना रहा है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, यहाँ के पार्टी के संगठन को भी बहुत वास्तविकता से जानते हैं।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं और युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। उन्होंने जनवितरण दुकानों में पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल बीपी व एक्सरे मशीन लगाने और CHC में दवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता और प्रभावितों को शुद्ध पेयजल देने को भी कहा। धनबाद रेल मंडल के राजहरा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से अपलाइन पर परिचालन ठप है। इसके कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और राजधानी सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरिंद्र कुमार मौर्य ने आज गुड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गुड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा।
9: कोचिंग मेंटेनेंस के लिए काम तो काफी प्रगति पर है, कुछ काम उसमें रह गया है, तो आई होप कि एक महीने में पिट बन जाएगा। और ये डिपो के ऑफिस वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, इसमें भी छोटे मोटे काम रह गए हैं। इलेक्ट्रिकल के दो ट्रेन जो यहाँ से चलती है मेंटेनेंस के लिए भागलपुर जाती है, वो दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे।
4: और अब मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुँच चुका है, जिसके बाद 15 जून तक झारखंड आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जून तक वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज का तापमान सर्वाधिक 41 डिग्री रहा, जबकि गुमला में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण माल पहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। आपदा में कई कच्चे मकाने की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। ट्राइथल स्पर्धा में आरती कच्छप ने रजत और प्रेम किशोर महतो ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। झारखंड महिला प्रीमियर लीग में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा नागपुर ब्लास्टर्स ने कप्तान शशि माथुर के 35 रनों की मदद से 145 रन बनाए। जवाब में पलामू वॉरियर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड के 110.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं पवन कुमार राम। आइए कार्यक्रम में इनसे सुनते हैं सबसे पहले ये देवी गीत।

AIR at 90. श्रोताओं, लोकगीत कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आइए अब सुनते हैं पवन कुमार राम से ये पूर्वी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार थे पवन कुमार राम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य

0: मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कर उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को मामले के हर बिंदु की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पुलों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मुंगेर परियारपुर भागलपुर सवेर सबौर फोरलेन गंगा पथ परियोजना का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत कराने को कहा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण सड़कों की चौड़ीकरण की योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ग्रामीण सड़कों की नियमित निगरानी और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में 3,76,000 मीट्रिक टन यूरिया, 1,54,000 मीट्रिक टन डीएपी, 2,38,000 मीट्रिक टन एनपीके और 1,70,000 मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार उपलब्ध है। यह भंडार जरूरत के अनुरूप पर्याप्त है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में अनियमितता की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित की गई है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत मई महीने में 10,882 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार प्रदान किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक 20,000 और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।
1: 10,882 लोगों को अभी मई महीने में हमने रोजगार से जोड़ा और आगे फिर जुलाई तक, जुलाई से पहले हम लोग कम से कम 20,000 लोगों को और रोजगार से जोड़ेंगे और प्रत्येक 2 महीने पर ये रोजगार मेला लगाएंगे।
0: इधर विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में आज से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में आयोजित होंगे। खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आवास पर आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े,

0: जारी है।
1: विधान परिषद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तर्क रहे हैं, एक्सरसाइज जारी है, समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द ही आप तक निर्णय पहुंचाएंगे।
0: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
2: अपने चुनाव परिणाम से भूल को सबक को लेते हुए हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी संगठन को तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को संतोषजनक हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी व्यक्ति अनुशंसा पर अब नहीं बनता है। संगठन सृजन साथी अभियान से ये ट्रांसपेरेंसी है और वही चयन होकर के आएंगे जो अपने आप को मजबूती दिखाएंगे।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को नई पहचान मिली है और करोड़ों लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाया है।
4: एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते थे और तब यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन किया था। आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं।
0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा कि 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मॉनसून बिहार में दस्तक दे सकता है। इसके बाद यह राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। अनुकूल परिस्थितियां रहने पर 25 जून तक पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
5: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: वयोवृद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद नीलानी का आज मुंबई में निधन हो गया।

0: 76 वर्ष के थे। पहलाज नीलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहलाज नीलानी के निधन पर दुख जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान और रचनात्मक कार्यों को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना पुलिस ने एक कोचिंग संस्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में 2 गार्ड को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियारों को जब्त कर FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के हनुमान चौक के पास पुलिस और SSP की टीम ने 110 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र और परसा बिखा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 700 लीटर शराब और बियर बरामद की है। गया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल और GRP की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर के तरियानी प्रखंड के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। रोहतास जिले के आलमपुर पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीनियर अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 वर्ग की T20 और वनडे प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 8 जून से होगी और मैच पटना, भागलपुर तथा सोनपुर के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया की

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
3: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत शेखपुरा जिले के 3 पंचायतों के मुखिया को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इन जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंचायत प्रगति सूचकांक के अंतर्गत स्थानीय लोगों की भलाई और तकनीकी व्यवस्था के बेहतर उपयोग के लिए आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शेखपुरा के केवटी ग्राम पंचायत के मुखिया दीपक कुमार, डी कुसुम्भा के मुखिया साधु चौधरी और महासार के मुखिया मथुरा यादव शामिल हैं। इन तीनों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मानित होने पर शेखपुरा में खुशी की लहर देखी जा रही है। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 53 करोड़ रूपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही वे सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को लटका कर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
4: यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है, और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाता है।
3: इधर जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित इस सहयोग शिविर में 90% मामलों का निपटारा समय से पहले कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की गई। इस दौरान जिले में कुल 1,87,605 घरों का सूचीकरण किया गया, जिसमें 1,46,513 परिवारों की गणना की गई। प्रगणकों ने लोगों से 33 प्रकार के प्रश्नों की जानकारी ली, जिनमें मकान की स्थिति, रसोई, शौचालय, यातायात के साधन, रोशनी की व्यवस्था आदि शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखपुरा की अनुमानित जनसंख्या 8,96,082 आंकी गई है, जो 2011 की जनगणना की तुलना में लगभग 40% अधिक है। 2011 में शेखपुरा की जनसंख्या 6,36,342 थी। पहले चरण का कार्य पूरा होने के बाद जिला प्रशासन अब अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। शेखपुरा जिला भीषण गर्मी से जूझ रहा है। पिछले दिनों मौसम के बदले मिजाज के दौरान तेज हवा के साथ बारिश से तापमान में कमी आने के कारण मौसम सुहावना हो गया था और लोगों ने खरीफ फसल की शुरुआत को लेकर धान के बिचड़े डालने, मकई, अरहर आदि की बुआई के लिए खेतों की जुताई का काम शुरू किया था। लेकिन इसके बाद बारिश के रुकने और मौसम के बदलने के बाद शेखपुरा का तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के बीच जिलाधिकारी शेखर आनंद ने लोगों से पेयजल की बर्बादी न करने की अपील की है। उन्होंने जिलावासियों को पेयजल समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 24 से 72 घंटे के बीच किया जा सके। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शेखपुरा जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 29 मई से 31 मई तक चले इस चैंपियनशिप में शेखपुरा की टीम ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पटना इस चैंपियनशिप का विजेता बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल पूरा होने पर जिले के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने उनके शासनकाल में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार की जमकर प्रशंसा की। इसके अलावा लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी लोगों ने सराहना की तथा उनके शासन काल को भारत का स्वर्णिम काल बताया।
5: चंद्रभूषण शर्मा बिलासपुरा का निवासी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूरे होने में बहुत से इन्होंने विकास के कार्य किए हैं। कोरोना काल में देश में जनता की जान को बचाए हैं और रेल का यातायात साधन का भी विकास किए हैं और विदेश नीति में भी इन्होंने बहुत से कार्य को सफल बनाए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ, उनका भारी मानता हूँ।
3: राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से रासायनिक खाद के कम प्रयोग, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी के संरक्षण पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
2: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
6: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं सुनील कुमार मिश्र। श्रोताओं आइए कार्यक्रम में इनसे सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा ये गीत।

आकाशवाणी एट 90। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार थे सुनील कुमार मिश्र। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए श्रोताओं कार्यक्रम के आरंभ में सुने हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म बॉम्बे का ये गीत।

रजनीगंधा कार्यक्रम में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है श्रोताओं। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म बरसात का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनवर सागर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बेटा से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोता रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म बेवफा सनम का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं योगेश ने और संगीत से सवारा है निखिल विनय ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दाग द फायर का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शिकारी फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी।
0: मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
8: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top three. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
10: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
9: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, or NEC, Mr. Shah, in a social media post, said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said that yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the Ekta Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said that yoga unites the mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world.
0: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी
9: We have a report.
8: The Ekta Arena in Ahmedabad has opened its door to more than 400 participants from 60 nations, including international contingents from USA, Ghana, Kenya, and Malaysia. Host nation India is fielding a strong 122-member squad competing across six age categories from sub-juniors to senior masters. In a global first for the sport, an advanced electronic scoring system has been introduced to ensure absolute transparency in judging every posture, balance and flow. This championship signifies a major transformation for Yogasana, elevating it from a discipline of spiritual wellness into a highly technical, competitive sporting event aimed at Olympic movement. Aparna Khon, Akashwani News, Ahmedabad.
9: Defence Minister Rajnath Singh today approved a two-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency in New Delhi. He also released the revised delegation of financial powers for the defence services, including medical and works projects. The Ministry of Defence said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route, in line with the current year's budgetary allocations. Union Public Service Commission has developed face authentication protocol in its endeavour to enhance the integrity of the examination process and prevent impersonation. The Commission successfully implemented face authentication during recently held Civil Services and Indian Forest Service Preliminary Examination 2026. The system enabled live, real-time authentication of candidates at exam venues through mobile phone-based verification by invigilators, ensuring seamless identification and eliminating the possibility of impersonation and malpractice. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that India has made extraordinary strides in renewable energy, emerging as one of the world's top producers of non-fossil fuel capacity. The minister made these remarks on the event of 2 years of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, scaling the solar home to 1 crore rooftops in New Delhi. He said the main reason for the success of the scheme is that citizens of the country have understood that they can generate their own electricity on rooftops and the electricity bill can become zero. The Ministry of Parliamentary Affairs and West Bengal Legislative Assembly today signed an MOU for the implementation of National E-Vidhan Application or NEVA in West Bengal Assembly at Parliament in New Delhi. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju termed the integration of the West Bengal Assembly into NEVA as historic. He said that all assemblies and parliament of the country have now come in onto a single platform. Mr. Riju said that this application has been launched to fulfill Prime Minister Modi's vision of One Nation, One Application. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari today launched India's first flex-fuel passenger vehicle by Maruti Suzuki in New Delhi. Flex-fuel vehicles can operate on a range of ethanol-petrol blends from E20 up to E100. Speaking at the launch, the minister said the entry of flex-fuel technology into the passenger vehicle segment is not merely a product launch but the beginning of a new chapter in the country's energy transition. Mr. Puri said that large-scale adoption of flex-fuel technology can significantly multiply the impact of ethanol-based mobility.
11: India's flex-fuel journey expands from two-wheelers to four-wheelers, and this transition is significant. Today, India has over 30 crore two-wheelers on the road, but we also have 37 lakh passenger vehicles representing family mobility and the future of personal transportation. When flex-fuel technology enters this segment at scale, the impact multiplies dramatically. This is the beginning of a new chapter in India's energy transition.
9: Mr. Gadkari described the launch as a remarkable and forward-looking achievement. The minister noted that the milestone aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi for clean, sustainable and self-reliant mobility. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and the youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. Our report.
12: These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience. GST reforms provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashvani News, a chartered accountant Manoj Basir of Thane in Maharashtra said that the reforms in direct and indirect taxes has brought economic stability.
5: Kendra Sarkar ke apratyaksh aur pratyaksh karke upar.
13: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reforms, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structures by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
12: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 8,31,000 till date. To digitize and make public procurement more streamlined and inclusive, government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashvani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta,

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड के 110.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म नगीना का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं फिल्म नदिया के पार से हेमलता और जशपाल की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल और संगीत हैं रविंद्र जैन के।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गाना सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रोटी से। इस गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। शी इज अ गिफ्टेड फोक वोकलिस्ट अक्लेम्ड फॉर हर सोलफुल रेंडिशंस इन मैथिली, हिंदी एंड भोजपुरी। Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Soumya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are हरिभूषण झा ऑन तबला, ललित कुमार ऑन ऑक्टोपैड, अमन कृष्ण ऑन ढोलक एंड शशिभूषण झा ऑन कीबोर्ड। शी बिगिन्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड चानन भेल।

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. She concludes her rendition with a composition titled

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

0: क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अमीना हुसैन,
1: नमस्कार।
0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार,

ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है, मन हृदयर जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी के कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरु नाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवे गरे के ही कही थी बा कथा मानव तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुमे मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में

0: नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगा सन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमार से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among

हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की यह सभा यहीं समाप्त होती है। हम अपनी कल की सभा के समस्त कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:48 पर पुनः उपस्थित रहेंगे। अभी हमें दें इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।